0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़। GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।
3: शान रिजालत मौला।

मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह, समाप्त फरमाते हैं।

0: सखी नगोई देखी आए जग सारा सफर का बेड़ा पार तू कर दे बलिया दे सरदारा।
1: ऐसा नारा लगाएं इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर बरगा सकीन कोई।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

थी वञे थी त सुबुह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट

0: एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हे नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252586
3: जी हां बुड़ी 331 5580
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। ऐसे जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर।

पता लगाए, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबाज बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबाज बुलंद हैदर।

मौलाली के आशिक बैठे हैं, तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहां।

जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाथर में बावाज बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाज बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई नहीं किया जग सारा, जबर दबेड़ा पा

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.1।

जो कंट्रोल अमेरिका वट आए अमरीकी सेंटकॉम दावा कई है त अमरीकी फौज गैम्बिया के झंडे वाले जहाज के ईरान वजन का रोक के नाकारा बनाए वो नाकाबंदी की भंजकड़ी कदड़ जहाजन के नुकसान पहुंचाए वो आमना हरमुज जो मुकम्मल कंट्रोल ईरान वट आए ईरान की बिना इजाजत ए मुकर्रर कल रूल्स का हटी कर आमना हरमुज के सफर करण जा नतीजा खतरनाक हुंदा ईरान खबरदार कर छो ईरानी फौज चवण है तो समूरा व्यापारी जहाज ए आयल टैंकर्स ईरान की इजाजत से ही आमना हरमुज का गुजरी सकन था जो ये न कन्द वो पांजे

जंग के खात्मे लाइ बावकार फ्रेमवर्क तैयार है। वक्त अची वियो त बे रद्द अमल ए लफ्ज़न सा पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी सा फोन ते राबते दौरान गाल बोल मसूद पज़ेशान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो अख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त ॿी दुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे। कुवैत में एयरबेस ते ईरानी हमले में केतिरा ई अमरीकी फौजी ज़ख़्मी थिया। अमरीकी काबू इदारे ब्लू बांग जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ईरानी हमले में ब MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स खे सख़्त नुक़सान पए थो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 10 मिसाइल खे तबाह करे छॾियो, पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस ते किरियो।

माटे की GFM 80 और माटले की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 25 25 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बल बल पढ़न दी है यार सजर दी हूं दिसा कुजुदाई मुस्लिम विचों का फरती वन ए केड़ी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करें न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के मेरा यार दोस्त रोकिन था तू मैंने महबूब सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन टोखे होते तुझा वेरी मारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो टॉपी जो प्रोग्राम तालीम रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर की छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से आश्क वेपार चो यो किसो ता के आ सही करे तो बुझाया आश्क वेचारो जदा बीमार थो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खनी हलो आउते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

आउं ते सोचा पियो जे मुझे मथा मौत आयो ता उनके छा चवंदस ओ ते

मामलन लाए टूल टैक्स वसूल करे तो कुछ और से लाए उन मामले ते गाल बोलती सके थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी में बात बाबत फैसलो न कर सके व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बिना नतीजे खत्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा व्हाइट हाउस पारा चयो त ईरान सां मुआदो अमेरिकी मुफादन ए ट्रंप के शर्तन तहत ही मुमकिन है। उन अगु अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पहली नाकाबंदी खत्म करने जो ऐलान किया हो। सदर ट्रंप बया मकसद हासिल करने में सरगर्म है। अमेरिका ईरान के पहली नाकाबंदी खत्म न कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रज़ाई जो ट्रंप के यूटर्न रद्द अमल। मोहसिन रज़ाई चो तो अमरीकी सदस्य सफारतकारी दौरान टे भेरों धोखो जी रो है। अमरीका तरफा गाल में अद का मुतालबा क्या पाया वजन ट्रंप के अमल साबित कर छो तो गाल में संजीदा न है। जंग के खात्मे लाए बावकार फ्रेमवर्क तैयार है। वक्त अची वो तो बे रद्द अमल ए लफ्सन से पैंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर के कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी से फोन से राबते दौरान गालबोल मसूद पेजान चो तो ईरान ईमानदारी से गाल रस्तों अख्तियार कर जरूरत है तो बी दुर आलमी जिम्मेवार की पासदारी कर। कुवैत में एयरबेस से ईरानी हमले में केतरा ही अमरीकी फौजी जख्मी थे। अमरीकी खबरू इदारे ब्लू बर्न की दावा रिपोर्ट में चयो है तो ईरानी हमले में ब MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स के सख्त नुकसान पे तो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 10 मिसाइल के तबाह कर छो पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस से किरियो।

पाकिस्तान के आलमी सतह ते अकेलो करण वारे मोदी के 10 सालन वारी मुहिम बुरी तरह नाकाम थी वही। अरब मीडिया जो चवण है तो मोदी पाकिस्तान के दुनिया का परे करण वारी मुहिम में मुकम्मल तौर ते नाकाम थियो। पाकिस्तान अज वाशिंगटन बीजिंग तेहरान ए रियाद से एक ही वक्त राबते में आए। पाकिस्तान खिते इलाकई मामलन ते असरअंदाज थियणदड़ एक अहम तौर बन चुको है। पाक भारत शिफ्तान दौरान आलमी बयाने में भी पाकिस्तान की कामयाबी मिली। पाकिस्तान जा बांग्लादेश से लागापा भी बेहतर थे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू अठाल चौक वट खौफनाक हादसों चार जना फोत चार जख्मी तेज रफ्तार गाड़ी बिन गाड़ियों ए मोटरसाइकिल से टकराई वही चार जना फोत चार जख्मी फोतन में आर्मी के अकाउंट्स शोबे में मुलाजमत कड़ शिकारपुर वासी आमिर सुमरो भी शामिल बे फोती की सुणप मोहम्मद फजल तौर कई वही बिन्हीं फोतन ए जख्मी की सुणप कई पी वे। पुलिस जो चवण है तो हादसे जो सबब बणचंदड़ गाड़ी के कब्जे में वी छो है ड्राइवर फरार थी वो है। रानीपुर के फेरोज हाजी राजपुर गोठ से मंशात फरोशन की गिरफ्तारी ला पुलिस चढ़ाई दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में शहीद थियल पुलिस अहलकार मोहम्मद वारिस नारेजे की जनाजे नमाज अदा कई वही। एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी डीएसपी से बेन पुलिस अहलकार की शिरकत। एसएसपी खैरपुर जो चवण है तो ऑपरेशन जारी है अठ शकी मान गिरफ्तार किया वो है। एचआईवी बचा मुहिम लाइ निकतल जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर गिम्बट के गेम्स अस्पताल पे तो एचआईवी में मुब्तला बार की यादत जूनियर जुल्फकार भुट्टो मीडिया से गाले चो तो कराची के सिंध का धार थन न डींदी पूरे मुल्क में सेहत जो शोबो खराब है उनके सुधारणो पवन्द। एचआईवी में मुब्तला मरीजन से नफरत न पर प्यार किया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। ग़ैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 231 5525
3: रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप जी? जी सुबह का सलाम हूँ आप सबको. और जैसा कि आप सुन रहे हैं जी मैटिया नेटवर्क, आओ बात करें विद आर जी सना के साथ. अपनी अर्थ आवाज सुनने के साथ आपको सुबह का सलाम आप सबको पहुँच जाए मेरी तरफ से. तो जी कैसे हैं आप सब? और ईद गुजरी है, ईद किसकी कैसे गुजरी है जरा ये भी बताना बाकी है. और कौन कौन उठ गया है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन नींद से आके अपनी खोल चुका है, जैसे नहीं खोले हो जाके मुंह हाथ धो लो और मुझे बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि दो घंटे हमारे पता ही नहीं चलते. जैसे कि अभी 20 मिनट गुजर गए हैं और जबकि हमारे थे ही नहीं, क्योंकि हम साथ नहीं थे इस 20 मिनट में. साथ थे भी लेकिन हम लोग बात करना स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया बात करना. तो जी कैसे हैं आप सारे? तो पहले तो ये बताएं कि ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, और अपने ही ममालिक में गुजारी है कि अपने जो है जहाँ दूर दराज बैठे हैं ममालिक में वहाँ पर गुजारी है, और अगर जो करीब है घर वालों के साथ गुजारी है, या फिर अपने दोस्तों में गुजारी थी.

प्ले कर सकूं, प्ले कर सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाते हैं आपके साथ, आपकी पसंद के सॉन्ग कोई और भी सुन रहा होता है तो आपको खुशी होती होगी, और बल्कि होती है ऐसे ही है। तो जी आपने क्या करना है मुझे मेरे सवाल के जवाब के साथ, जो मेरा सवाल होगा जो आपको लगता है इसका राइट आंसर है, आपने वो मुझे जवाब देने के साथ साथ अपने कोई पसंद सा अच्छा सा प्यारा सा अपने जैसा कोई सॉन्ग मुझे नाम कमेंट कर देना है, ताकि अगर आपका जवाब जो है राइट होगा तो वो मैं सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी, और अगर वो प्ले नहीं होता तो आप समझ जाएंगे भाई समझदार तो ज्यादा है कि वो आपका इसका मतलब जवाब ठीक नहीं है। तो ऐसे ही है, अभी यहाँ पर हम लोग एक और सॉन्ग गए हैं हमारे पास मौजूद, तो सबसे पहले इस सॉन्ग से स्टार्ट लेते हैं अपने प्रोग्राम का। मेरे पास एक क्वेश्चन सॉन्ग है जब्त ड्रामा है, स्टार्टिंग न्यू है, जून में आया था, फर्स्ट जून में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो मेरा ये था कि अगर मैं आज सुन रही हूँ कोई भी नया सॉन्ग, कोई भी ओस्टी हो, कोई भी सॉन्ग होता है तो वो मैं आपके साथ हमेशा सुन रही होती हूँ। तो ऐसे ही ये भी हम प्ले कर दिया है और सुनेंगे इसको भी आज भी साथ में हमेशा की तरह।

तो जैसे कि सुन रही थी यहाँ पर हम लोग सॉन्ग, और यकीनन आप लोगों को भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई भी सॉन्ग होता है तो मैं हमेशा अकेले नहीं सुन रही होती, हमेशा आप लोगों के साथ ही मेरा कोई भी सॉन्ग होता है वो आपके साथ ही प्ले होता है।

0: तो जी हम देख लेते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हमें सबसे पहले कौन ज्वाइन करता है, हमें हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले कमेंट करते हैं, एसएमएस करते हैं सकर के लिए कहते हैं मसरूर अहमद कराची से, आज सना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना जी, लास्ट संडे आप नहीं आए प्रोग्राम करने, बहुत मिस किया आपको और ईद मुबारक हो, आपको ईद कैसी गुजरी, आपको भी और आपकी ईद कैसी गुजरी। अच्छा जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मसरूर अहमद, आप बताएं आप कैसे हैं, और हमेशा की तरह आज भी अच्छा लग रहा है कि आपने सबसे पहले मुझे कमेंट किया है, 8 मिनट में आपने मुझे ज्वाइन किया है, मेरा वेट कर रहे थे, ऐसा ही हो सकता है। और बाकी आप मुझे कहते हैं मेरी ईद कैसी गुजरी, मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी और पहले दिन मैंने आप लोगों से बात करने के लिए आपके साथ मौजूद थी, लेकिन शायद आपको नहीं पता था या आपको आपने सुना नहीं था एफएम, तो वरना आपकी कॉल और एसएमएस तो मुझे जरूर आता है, मैंने कहा यार आज कैसे नहीं आया आपका, सबसे पहले तो हमेशा आपके कमेंट आ रहे होते हैं, एसएमएस आ रहे होते हैं, लेकिन उस दिन नहीं आया था, तो उस दिन मैंने लाइव कॉल पर बात की थी, सबसे बात की थी और जिसकी मुझे कॉल रिसीव हो रही थी मैंने हर एक बंदे से बात की थी कॉल पर, और उसके अलावा एसएमएस पर भी बात की थी, मतलब कि एसएमएस हमने उसको रीड आउट किया था, उसके पसंद के सॉन्ग प्ले किए थे, ईद की बातें की थी बहुत सारी, लेकिन आप उस दिन हमारे साथ मौजूद नहीं थे, मिस तो किया था क्योंकि हर इंसान की जो कमी होती है वो कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, तो इट्स रियल, ये बिल्कुल सच बात है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि उस दिन आपकी कमी हमें महसूस हुई थी, जो बात है क्योंकि सबसे पहले कमेंट एक बंदे का देख रहे हो और वो ना आए तो उसकी तो कमी रहती है, तो अच्छा लगता है कि आप हमेशा की तरह मुझे हैं और आज भी बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही है आपकी कैसी गुजरी आप मुझे जरूर बताएं, मेरे जो सवाल है सवाल का जवाब बताएं और सॉन्ग हम आप प्ले करेंगे अगर आपका भी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हुआ। ओके जी, तो अभी एक और मेरे पास सॉन्ग है, मैं चाहती हूँ कि वो प्ले करें, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि हमें किसी और ने कोई और फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको इससे पहले सबसे पहले बताती चलूँ कि सवाल मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग अभी सो रहे हैं, जो अभी तक नींद में है, जिसको मेरी आवाज जा रही है, उठा नहीं है, उठ गया है तो मुझसे बात करने के लिए अभी नहीं उठा, तो आंखें खोलें और जाके मुंह हाथ धो लें और मुझसे बात करें कि मैं अपना सवाल आपको बताने लगी हूँ कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है, मोबाइल उठाना है, टाइप करना है 03000113488, आपने मुझे जो है व्हाट्सएप के जरिए एसएमएस करना है, और लेकिन जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है, एसएमएस करना चाहता है, एसएमएस करने के लिए आपने क्या करना है, मोबाइल को उठाना है और टाइप करना है 8881 पे एसक्यूआर लिख के विद योर सिटी नेम और अपने प्यारे से नाम के साथ आपने मुझे एसएमएस करना है, और मुझे बताना है कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दें और उसके साथ अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग का नाम बता दें, ताकि जो है अगर वो राइट होगा तो हम उसका आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। तो देखते हैं अभी कौन हमारे साथ मौजूद है और कौन हमें एसएमएस करता है, तो क्योंकि आज बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे पास मौजूद हैं तो हम लोग जरूर प्ले करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से, सक्कर के लिए कहते हैं या अली की शादी बीबी फातमा जहरान से, यकम जुलहज मुबारक, ईद मुबारक सिस्टर, बिग ब्रदर सदाकत हुसैन मिरानी साहब, बचल शाह मियानी सक्कर से, आप एंड फैमिली एंड FM 88 टीम एंड शो सुनने वालों को मुबारक, थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक, कैसे हैं आप, सदाकत हुसैन मिरानी आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक आप हमारे साथ ईद पे भी मौजूद थे, ईद के फर्स्ट डे भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद थी ईद की बातों के साथ, और आज तो हमारे पास रेगुलर बातें होती हैं जो कि अभी हमारे सिर्फ 1.5 घंटा बचा, 1.5 घंटे में बहुत सारी बातें करने को रह गई, तो जी बस एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, लेकिन वापस आएंगे, वापस आके करने के बाकी की बात रहेगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना, फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन,
2: इट्स टाइम टू,
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो।

0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

को ज्वाइन करने के लिए मुझे एसएमएस करने के लिए आपने परेशानी हो रहा, आपने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना, टाइप करना 888 PSKR लिखिए विथ योर सिटी नेम, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं और लाइव एसएमएस आपको मुझे आएगा तो मैं यहाँ पर सबके सामने रीड आउट करूंगी, आपको पसंद का सॉन्ग भी चलाऊंगी, आपके कमेंट को सबके सामने बताऊंगी भी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मुझे फेसबुक से सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुनने के लिए आपने GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना है, आपको मेरे नाम का फ्लैट दिख जाता है सना विद आरजी सना के साथ आओ बात करें, तो आपने बिना देर किए मेरी आवाज सुनने के साथ उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि भाई मेरा पे कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है और कौन कमेंट कर रहे हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग कमेंट के जरिए। तो आपने GFM का पेज आपने ओपन करना है विद आरजी सना के नाम से, आओ बात करेगा पहले फिलहाल आपको दिख जाता है, देर किए बिना आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझ तक ज्वाइन हो जाएं और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम जरूर मुझे बताएं ताकि आप लोग भी सुने और आपको पसंद का सॉन्ग हम भी सुने।

तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पे हमें ज्वाइन करते हैं, नूर हुसैन तोनियो हमें कहते हैं, नूर हुसैन तोनियो फ्रॉम लाड़काना, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस एंड टेक केयर। आपका जो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच नूर हुसैन तोनियो, आपने मुझे ज्वाइन किया है लाड़काना से, आप मुझे लाड़काना से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और मेरे सवाल का जवाब जरूर दिए मुझे, मैंने आपसे सवाल किया। अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना है या सुन लिया है, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है वो क्या है जिसे हम डूबता देखकर भी कोई बचाने नहीं जाता। अगर हम भी उसको देख रहे हैं तब भी उसको बचाने नहीं जाते, कोई भी उसको देख रहा है डूबता हुआ और कोई भी उसको बचाने नहीं जाता, तो पता लगाएं और मुझे भी बताएं कि ऐसा क्या है भाई जिसको डूबता हुआ देखते भी हैं हम तब भी बचाने नहीं जाते।

0: It's time to commercial break. जिंदगी गुजार।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

लेकर आएंगे, क्योंकि आज हमने सुबह का आगाज बहुत ढंग से किया था, क्योंकि फैजल की आवाज से अगर हम ना सुने तो हमारा दिन गुजरता नहीं। मैं यही बोलूँ आज कुछ तो कमी है, तो वो फैजल की आवाज की कमी है, उनकी आवाज में सॉन्ग प्ले नहीं किया ना, तो इसलिए हमें लग रहा है। तो मुझे तो लग रहा है, अब आपका पता नहीं, अगर आप लोग मुझे बताएं तो पता चलेगा ना भाई। जी फैजल की आवाज हम जरूर सॉन्ग प्ले करेंगे, और आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, और

लोग अभी करने लगे हैं फैजल के वज में एक सॉन्ग प्ले, उसके बाद जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ताकि मैं अपने सवाल का जवाब लोगों से पूछने लगी तो हूँ, जिसने अपने सॉन्ग प्ले करवाने हैं वो मुझे मेरे सवाल का जवाब देता जाए, मुझे अपना अपने पसंद का सॉन्ग सुनता जाए। तो जी मैं आपको जैसा कि बताऊं कि मेरा सवाल रिपीट करती हूं, रिपीट करने के बाद हम सॉन्ग को करेंगे। बोले तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो क्या है जिसको डूबते हुए देखकर भी हम बचाने नहीं जाते, तो बताएं कि ऐसा क्या है भाई जिसको डूबता हुआ देखते भी हैं तब भी बचाने नहीं जाते। तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए कि ऐसा क्या चीज

दुनिया पर कर दिया मैं सॉन्ग प्ले, और सॉन्ग प्ले हो गया है तकरीबन ऑलमोस्ट। और सुन रहे हैं हम फायज़ अली की आवाज़ में ये सॉन्ग, क्योंकि उनका राइट आंसर बिल्कुल ठीक था, जवाब भी ठीक था बिल्कुल, और सॉन्ग हमने गलत फायज़ अली की आवाज़ में।

0: about dear Evan Nicholson.
1: ईरान जी बिना इजाजत ऐं मुक़रर कयल रूट्स खां हटी करे आबनुस्के ऐं सफ़र करण जा नतीजा ख़तरनाक हूंदा। ईरान ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जो चवण आहे त समूरा वापारी जहाज ऐं आयल टैंकर्स ईरान जी इजाज़त सां ई आबनुस खां गुज़री सघनि था। जेको ईअं न कंदो उहो पंहिंजे ऐं ॿियनि जहाज़नि लाइ नुक़सान जो सबबु बणजी सघे थो।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग सोने दे चुड़ी, ये सब मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया था क्योंकि आपको पता है कि भाई आप सब आज विन हो चुके हैं, मेरा सेगमेंट को विनर कर चुके हैं। तो आपको पता है कि यार अगर आप लोग मेरा सेगमेंट विन कर दो मुझे बहुत ज्यादा दिल खुशी हो रही है कि आप लोग सब जीत गए। आपके सारे सॉन्ग हम सबके सॉन्ग प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ना कोई नाराज हो जाती है, मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपने पसंद के सॉन्ग

तो मैं चाहती हूँ कि एक और सॉन्ग में प्ले करते हैं आप सबके लिए मुनव्वर मलाइका ये सॉन्ग है, तो जी कर दिया आपने प्ले, सॉन्ग को भी सुन लेते हैं और आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ मैं ये सॉन्ग क्योंकि आपने मेरे सेगमेंट मिल गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे आज बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिया है।

मैंने तो डेडिकेट आप सबको करना था, क्योंकि इसलिए कि भाई आप लोग मेरा सारा आज का सेगमेंट मेरा विन कर चुके हैं और ऐसे हैं जिनका थोड़ा जवाब गलत था, तो लेकिन मैंने उन्होंने कोई सॉन्ग बताई थी तो सॉन्ग तो मैं प्ले नहीं किया कि भाई अगर मैं किसी एक का करती या दो का

में सबका करती है, एक दो रह जाते हैं टाइम के सूरत में, ये नहीं कि मैं खुद से प्ले नहीं करना चाहती, अगर टाइम की सूरत में वो सॉन्ग रह जाते फिर आप लोग मुझे समझते यार आपने हमारा नहीं प्ले किया, हम जो नाराज किए, तो ऐसे कमेंट करने से बेहतर था बंदा अपने पसंद के कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर देते। मैंने अपने पसंद के सॉन्ग को डेडिकेट किए हैं लेकिन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो देखते हैं यहाँ पर कौन मौजूद है हमारे साथ मौजूद है। कहती है सक्कर अस्सलाम वालेकुम सना बाजी, कैसी से आपके कंपेयरिंग लाजवाब है। आजाद ग्रुप से सैयद इमदाद शाह बुखारी विद माय बेस्ट फ्रेंड कामरान महेसर। ओके जी, और आप दोनों को ठीक हूँ, आप बताएं कि आप मुझे सुन रहे हैं आजाद ग्रुप से। तो जी आप लोग कैसे हैं और ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजारी ईद और बकरे शकरे आपने सारे अकेले खा लिए और इतने दिनों बाद आप पांचवे दिन, आज पांचवा दिन है ना, तो आज आप मुझे आके बोल रहे हैं ईद मुबारक। अच्छा चलें चलें खैर मुबारक। आपने पहले दिन इसलिए बात की कि भाई जो है ऐसा ना हो कि ईद के साथ हमें पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पांचवें दिन आपको याद आइए। ओके जी कोई मसला नहीं, मैंने सबके लिए आपके लिए प्ले कर दिया, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, आपको हो गई है देर मुझे ज्वाइन करने में, आप इससे पहले पता नहीं कहाँ गुम थे मुझे तो नहीं पता, शायद आप ईद ही आज ना मना रहे हो ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आपने मुझे ज्वाइन किया आपको पता है कि मेरा जो है आपके साथ होता है पूरा सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए, तो जिसमें तभी सिर्फ हमारे पास आधा घंटा मौजूद है और आधे घंटे के अंदर हमने सॉन्ग और सॉन्ग्स बहुत मजे मजे वाले प्ले होने हैं, तो आपने सोचा बस सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग सुनने चलते हैं, तो भाई नहीं सॉन्ग सुने थे तो आपने तो वैसे भी सुन लेने, मुझसे बात करने अगर आप आते हैं तो जानवी ज्वाइन क्या करें, अच्छा लगता है सबने बात।

0: बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन तो किया, ऐसे आपने मुझे हमेशा ज्वाइन करते रहना, हर संडे रहता है आपका मेरा साथ एक बजे तक, तो ऐसे ही नेक्स्ट संडे भी मैं मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का। तो जी यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर एक छोटे से शॉक ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे वापस आके करेंगे बाकी की बात। जब तक रखें साथ
1: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 सिंध की आवाज।
4: अपना खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ इसको करें फेस और दे कुदरती असली ग्लो। असली ग्लो दिन का शो।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578 6।
6: जी हाँ 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अबनाए हुर्मुज़ जी नाकाबंदी बरकरार आहे ईरान सां मुआहिदो थियो त अबनाए हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो हुन जो दारो मदार ईरान ते आहे कहिड़े रस्ते जी चूंड करे थो मुआहिदो थी वियो त अबनाए हुर्मुज़ टूल फ्री रस्तो हूंदो जेको सॼी दुनिया इस्तेमाल करे सघंदी अमरीकी जंग वारे वज़ीर पीट हेगसेथ जो सिंगापुर में ख़िताब सदस्य आहे त जंगी कार्रवाई ॿीहर कहिड़ी पई त कंदासीं यकीन आहे त अमरीकी मुफ़ाद में मुआहिदो करण में कामयाब थी वेंदासीं अबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल अमरीका वटि आहे अमरीकी सेंटकॉम दावा कई आहे त अमरीकी फ़ौज गैम्बिया जे झंडे वारे जहाज खे ईरान वञण खां रोके नाकारा बणाए वियो नाकाबंदी जी भंकली कंदड़ जहाज़नि खे नुक़सान पहुचाए वियो अबनाए हुर्मुज़ जो मुकमल कंट्रोल ईरान वटि आहे ईरान जी बिना इजाज़त ऐं मुक़रर कयल रूट्स खां हटी करे अबनाए हुर्मुज़ खे सफ़र करण जा नतीजा ख़तरनाक हूंदा ईरान ख़बरदार करे छॾियो ईरानी रवापारी जहाज ऐं आयल टैंकर्स ईरान जे इजाज़त सां ई अबनाए हुर्मुज़ खां गुज़री सघनि था जेको ईअं न कंदो उहो पंहिंजे ऐं ॿियनि जहाज़नि लाइ नुक़सान जो सबबु बणजी सघे थो।

0: KTN News.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

Bioraz, a product by Biocon International Pakistan. Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 network. GFM 88 ki aawaz. अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सो बिल्कुल जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली है और खूबसूरती में कैसे चार चांद लगने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इस प्रोग्राम के अंदर। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आपका हमारा साझो हो रहने वाला है, ठीक अब से लेकर पूरे दो घंटे यानी कि पूरे तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ। यहाँ पर जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जरा अपने हाल चाल भी बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंतकीफा हालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होगी, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक। तो चलिए जी, रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में मजे करने के लिए, प्रोग्राम में फन करने के लिए और प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली एंटरटेनमेंट के लिए। ओके जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खाले, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरी की चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर चार सौ

0: 40 उल्की समाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगा से प्रोग्राम करते हैं जी, और आगा से प्रोग्राम किया जाएगा प्रोग्राम में एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। तो प्रोग्राम में बहुत प्यारा सा एक कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाते जाइए और खूबसूरत होते जाइए।
1: Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari H

0: क्या?
1: हम बेहुनर नहीं, हमें इतनी तमीज है, जन्नत अली वली की गली की कनीज है। और तुम मुत्तकी हो जाओ, कोई और राह लो, कौसर तो एक मलंग के पीने की चीज है।
2: ये कह के हमने शेख

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
5: स्टेशन में सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 3315577786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लगाते जा रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और भाई क्यों ना हासिल करें, क्योंकि आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जाइए, फायदा उठाइए और परचेज करके आइए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए आपको पहले बताया कि कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप तफसीलन जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के ना आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है, यानी कि ये सब चीजों मिली करे जिकवाने तवाज लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तैयार किया है। आई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तवाजी जल्द के फ्रेश बनाई दिया है, गोरो बनाई दिया है, हर किस्म के निशानन के खत्म कर दिया है। आई तवाजे चेहरे ते झुरियूं आएं, दाग धब्बा आएं, वे सब चीजों खत्म थी वेंदियूं आहिनि। तव्हांजी स्किन जेका न बेरोनक साफ़ शफ़ाफ़ ऐं खूबसूरत थींदी आहे। ऐं तव्हां ॾिसंदा आहियो त बाबा वाकई फ़र्क़ु आहे बाबा, जॾहिं तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा। सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां नालो वठी करे पंहिंजे परचेज़ कयो, पंहिंजे लाइ नंबर आहे जनाब 03 15 7।

डॉक्टर सखावत अली राजपर कहते हैं कि को भी साइड इफेक्ट न कंदो क्रीम जेकॾहिं छॾिजे त बिल्कुल भी न कंदो। इहो तव्हां बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा त अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो पिया ऐं वरी तव्हां इहो सोचो था त अगरि असां क्रीम छॾींदासीं त असांखे मथां को नुक़सान पहुचे असांजी स्किन ते को साइड इफेक्ट अची वञे त अहिड़ो को बि सीन न थींदो छो त हीअ नेचुरल अज़ा सां तयार थियल प्रोडक्ट आहे। तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था जॾहिं दिलि चवे तव्हां छॾे सघो था छो त जेको तव्हांखे निखार मिलंदो जेका ख़ूबसूरती मिलंदी उहा हमेशह जे लाइ हूंदी।

ओके जी, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी स्वीटी, आप कैसी हैं? वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई। और दर्द दिल कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई प्यारी, जीजी में आ गई देखो हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा आरजे का मतलब मैंने ये निकाला है, आरजे का मतलब रेडियो, अच्छा आर का मतलब रेडियो, जे का मतलब जान, मतलब सिद्रा आप रेडियो की जान, क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजरा, गर्मी में ऐसी जो कम करना, अच्छा यानी कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे तो वाकई ठंडक का एहसास होता है, तो बस वाकई आप मौजूद रहिए। और कहते टॉपिक मो बुधो ही कोन है, टॉपिक हानी तमाम बुधी छो हों, अच्छा तमाम उही आयो जी अगर पांच फोटू कढ़ा पिक्चर कढ़ा तो उन 250 फिल्टर लगाईंदा तमाम उही आयो बुधा तो सही खबर पवे तो जी ही मानू जी अजकल असा आसपास घुमन पाया जी अगर फोटो उन्होंने चाहिए तो बाबा फोटू कढ़ो असो या फिर अस उन फोटू कढ़ा तो हू चवंदा तो बाबा यू फिल्टर न बीबी असके अद कलाक तो फिल्टर सिलेक्ट करने में लगी वेंदो है सो तवा सा भी यो मसलो है या फिर न खास करे उनन मानन जला जके वरी ओए बेचारा डाडू बेजार हुंदा न मसले जी वजह से आई छा त छो बिल्कुल जी मोहब्बत हुआ है तवा जो अच्छा दर्द दिल कहती है कि ज्यादा नहीं लगाती मैं फिल्टर, मैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम लगाती हूँ। आए हाय ये हुई ना बात। अच्छा नूरी संतनी भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम समंदर पार, ओके जी। और क्या कहते हैं सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, लवली यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी नसीब अच्छे करे, आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते अदी सागी गाल कमेंट पड़ी आखिर में चवंदी आए व्हाइट एश लगायो हाँ तो पो आयो ना जी तमाम सुना थी वन इन में भी तो तमाम जो फायदो है भला गाल थोड़ी बस समझण वाली है।

साईवा वाह साईवा ॾाढो भलो गानो। अब्दुल्ला भयो हमारे साथ मौजूद के दे शो उदास वेठो आही खुशी जे ओ मोक्यो आहे खुशी जो इजहार कर बस तू न उन बेवफा के याद कर मंजूर सकरानी जो कलाम दा हलाए जो अज जी शाम अब्दुल्ला भयो ही गानो तमाजे नाले।

0: वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ॿुधो पिया. वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि, जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि. तव्हां इस्तेमालु कयो पिया, ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती वधे पई. अली अकबर बिरोही भाउ सां गॾु मौजूदु आहिनि. सकरनि खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो. भाउ मां सफ़ा ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? मज़े में. सुमाटू गोपांग सां गॾु मौजूदु आहिनि. हाय, वालेकुम अस्सलाम, मां ठीकु आहियां. और तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया कंबर सिटी खां. गानो चयो आहे, मां कोशिशि कंदमि तव्हांजो गानो हलाईंदासीं. ठीकु
1: आहे.
0: वासु भाई, तव्हांजो गानो बि हलायूं था बाबा, सबर कयो थो. अच्छा, प्रेमचंद हमारे साथ.

हेलो प्रेमचंद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। चाचा खाले झुणे जो लिखते हैं कि बस लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब नहीं होते और बस लोग जुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, यह तो हकीकत है।

रस माटू गोपां कहते हैं कि वाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाओ सिदरा की तरह हो जाओ सफा प्यारी प्यारी तवा भी लगायो नी। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि तुम ब्रेक पर जाती हो और मैं टिकटॉक पर, बस इतना फर्क है तुम में और मुझ में। अच्छा सखावत अली राजपुर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते कि आयो अधी खुश आयो, कल अभी मैसेज कयो हुयो त गानो मुधरायो जादू जी माफ किया दिल को तोड़ने वाले। बिल्कुल इन गाने ला तवा के अदा भा थोड़ो सबर करनो पवंदो, ठीक है, तवा चो गानो भी हलाईंदासि। ऐं चवंदा आदि तूं पाण क्रीम हणे थी, हा हा हणा थी, तॾहिं त तव्हांखे ॾिसण थी। सनाला ब्रोही हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम सनाला, छा हाल तव्हांजो, ख़ुशि आहियो। नोरी सिंह तुंहिंजो भाउ कहे थी अदी वाइट एस की लवली क्रीम यूज कयूं था, बिल्कुल जी कयो कयो कयो सभु कयो। वफ़ा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद आहे जी, वालेकुम अस्सलाम भाउ। चाचा खालिद कहते मेरी डीपी विदाउट फिल्टर्स यू कैन चेक, वाह सही वाह चाचो तो चिमके तो। चाचा सची सची बुधा छापिया लगाया अजकल एडा चमको पया।

किशोर भाई के टॉपिक डीपी ज़ूम करे दिसो आ कुछ नथो चवा बाकी हां टिकटॉक ते फिल्टर हणदो आया कूड़ कोनी अला चलो यह अब सुठी गवे से टिकटॉक ते द फिल्टर्स द मानो जैसे जाम लगाईना है और डीपी माशाल्लाह भली थे अरे ज़ीशान अली राहूजा तुम सगट मौजूद आयो मोहब्बतू तांजे प्रोग्राम उदो पया व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगायो पया कोन यो बुधाय जो अगर तमा फेयरनेस क्रीम लगाण चाहियो था त तमा चला व्हाइटिश सी लवली क्रीम मौजूद हव ये व्हाइटिश सी लवली क्रीम त बाबा तमा सबनी जला डाडी जरूरी आहे छो त नाइट क्रीम त मतलब कोई कोई लगाइनो पर फेयरनेस क्रीम त हर कोई लगाइनो आहे सो व्हाइटिश सी लवली क्रीम तमा लाज़मी ट्राई करे दिस जो छो त व्हाइटिश लवली क्रीम

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

जी जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। माचोदी हमारे साथ जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके कार को फॉलो करके अपनी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो लगाते जाइए जनाब। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइटिश एंड जी स्किन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी सरा मैं आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए इतनी सी बात आप लोग सबसे पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसके साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी

मिल रहा है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम और दूसरा डी स्किन फेस वॉश। ये दोनों चीजें हैं और बहुत ही लाइट वेटेड फार्मूला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ऐसी बहुत सारी आपने नाइट क्रीमें लगाकर देखी है जो कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसा होता है कि जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो मजीद जो है ना पता नहीं अजीब सी हो जाती है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है वाइटामिन ई बीड्स से। वाइटामिन ई बीड्स जो है ना ये फार्मूला पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है और दो तीन प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो वाइटामिन ई बीड्स है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयार की गई है एक जबरदस्ती क्रीम है जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से अवेलेबल है। और इसके साथ आपके चेहरे पर अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आपके चेहरे पर सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल के बाद जो ना वो परफेक्ट सा रिजल्ट लाने वाला प्रोडक्ट है, तो दो रातें आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स वो खत्म हो जाते हैं, उसके अलावा आपके चेहरे पर जो है ना वो अजीब से निशान आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो दो रातें आप इस्तेमाल करके देखिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखिए और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन फेस वॉश। डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके चेहरे पर जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर जो है ना जितने मसले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए जनाब डॉक्टर से रिकमेंड किया गया एक प्रोडक्ट है, जो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डॉक्टर जिसकी तस्दीक कर चुका होगी ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। डॉक्टर से ये तस्दीक शुदा प्रोडक्ट है और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी अप्लाई करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो है ये दोनों चीजें आप साथ में लगाइए। रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्रीम और बाकी फेस वॉश आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, किसी मर्तबा आप अपना फेस करना चाहते हैं फेस वॉश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर लाजमी जो ना वो अवेलेबल कराते जाइए ताकि आपके एरिया में भी मिलते रहें और ऐसा ना हो कि आप कहीं दूर जाएं तो ही आपको ये प्रोडक्ट्स मिले, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और आपको इजीली मिल जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, लगाते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी वो हैं वो इंसान जो कि अपना फोटो निकालते हैं तो 250 फिल्टर्स लाजमी इस्तेमाल करते हैं। भाई फिल्टर्स का जमाना जो है वो चल तो काफी ज्यादा रहा है लेकिन फिल्टर्स की जरूरत उन लोगों को काफी ज्यादा होती है जिनके चेहरे की स्किन सही नहीं होती, जिनके चेहरे पर निशानात होते हैं एक ही नहीं होते हैं, तो अगर ये चीजें आगे चेहरे पर हो ही नहीं तो आपको फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन फेस वॉश आप लगा सकते हैं, इन दोनों चीजों के इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो क्लियर स्मूथ और शाइनी बन जाती है।

ओके जी, सो बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर शीला को लगा लिया है, जो कि हमें एक प्यारे भाई ने फरमाइश कर दिया था। मैसेजेस की जाने बातें हैं तो आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। यासीन कुटाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, कहते अलहमदुल्ला सिस्टर अमा बुधायु की आयो पुरानी ईद जो मुबारक हूँ, जन्म गर्मी हालत खराब करी छी है और तमाके चौथा भली करी आया प्यारा भा पा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह सलाम अदी शो तमाजो नाइस आहे वालेकुम असलम प्यारा भा मोहबतू एंड तमाजो प्रोग्राम बुध पया। उन खां अलावा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं। बाजी सिद्रा आप कैसी हैं? बाजी कल फरमाइश की थी, क्या याद है या नहीं? शेला गुल का गाना लगाइएगा। थैंक यू एंड जमादार वीरम आसिफ सोलंगी सलीम एंड मुबशिर सोलंगी को डेडिकेट कीजिएगा। चलिए ये गाना आपका चल रहा है, आप इंजॉय कीजिए।

हमारा पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और ये मौजूद है असा के ही वारो गानो बुधायो, कहीं अर्श पर कहीं फर्श पर कहीं उनके दर कहीं दर बदर। चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना लगाऊं, लेकिन आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, तो बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आज सॉन्ग सुनाए फायजाली का, फायजाली बिल्कुल आपको सुनाई जाएगी। और चाचा खाली जुड़ी जो मेरे साथ मौजूद है, चाचा बिल्कुल तमाम गानो भी हलायूं था वेरो पानी सीट थे। और ये है सगलीन अब्बास, आप कैसी है, उम्मीद है की अच्छी होगी। जी जी माँ सफा अच्छी है यहाँ आई तमाम दोनों प्यारे भाजू। और ये है जी हमारे साथ हेलो सिद्रा मुस्कान, मकसूद मल्हा मेहरापुर से सिद्रा मुस्कान। लिखते हैं कि किसी के चीखने चिल्लाने से उसका नसीब तो बन सकता है लेकिन तकदीर नहीं बदल सकती, यह तो हकीकत है वैसे। और मकसूद मल्हा कहते हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पूछते हैं बोलते हैं तुम हमारे, थोड़ा सा मैसेज समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, शायद ये कहना चाहते हैं कि सब आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या इस्तेमाल करें, आप इतने प्यारे हो चुके हैं। तो उन्हें बताइए जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है कि आप इतने ज्यादा प्यारे बन चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लगा दे जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है, ताकि आप लोगों की खूबसूरती मुकम्मल हो जाए, आप हसीन प्यारे और खूबसूरत हो जाए।

0: अच्छा तव्हां जॾहिं बि पैनल ते मैसेज कयो न, महिरबानी कंदा कयो पंहिंजो नालो लिखंदा कयो,
1: ठीकु आहे?
0: अच्छा गुड आफ्टरनून सिस, शो तव्हांजो लशपश आहे, अताउल्ला ईसा खेलवी प्ले करना, और सखर वालों के लिए चलें, सखर वालों के लिए करेंगे ये गाना, और क्या कहते हैं आप हमारे साथ हैं। बलोच हैं जी मीरपुर खास से, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये किसी ने लिखा है, अहमद मुगल का गाना सुनाइए, रात थे थी तो सूरज जागन था। अली नवाज नूरपुर से हमें सुन रहे हैं, क्या बात है अली नवाज भाई, आपका वेलकम।

अच्छा गानो तो ॾाढो भलो आहे ॿुधंदासीं पर मैसेजेस आहिनि ऐं मुंहिंजी दिलि चए थी जल्दी जल्दी मैसेजेस ख़तम करे वेठा जी वरी कॉमेंट तरफ अची सघूं और ये हमारे साथ ही हांजी बाजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एच और डी स्किन के प्रोडक्ट्स अब हमें

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's time to commercial break.
1: जिंदगी गुजारो एकदम शुभ सतलगी ट्री हमेंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

मैसेजेस तव्हांजा खोड़ सारा आहिनि, सो मैसेज जल्दी पढ़ंदा हलंदासीं। और ये वालेकुम अस्सलाम, आप ही सिद्रा मुस्कान, आई एम फादिली लाशारी। आठ सॉन्ग सुनाइएगा, अहदी वफा ओएसटी डेडिकेट टू माई बेस्ट फ्रेंड प्रिंस मोहसिन लाशारी। और आपने अपने दोस्तों को प्यार दिया है बहुत ज्यादा, तो क्या बात है जी, दोस्तों को प्यार दिया करें। और इसके अलावा इरम कहती, माई डियर दिलबर, प्लीज प्ले तू मुझो दोस्त ना ही यार, मुमताज मुनीर जो गानो आ। मां कोशिश कदम हलाईंदासीं अगर टाइम बची हो तो। ये कहते हैं, वेरी गुड शो आपका, थैंक यू सो मच, नाम नहीं लिखा आपने, अपना नाम लिखा करें। इमरान अली बिरोई हमें सुन रही है लाड़काना से, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई लिखते हैं कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें सिर्फ नजर मिलाने का शौक था, मगर क्या करें, नजरें तो उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरें चुराने का शौक था। आए हाय। अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलों से, मोहम्मद हारून संदीलों हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। गोठ गदे जी लाड़काना से गुलाम सरवर सुमरो है, वालेकुम अस्सलाम बाजी मुस्कान। अच्छा। गाना चलाएं। ओके भात आज मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बुधो पया, मकसूद मरा हमारे साथ हैं, गाना तो सुनाओ सिद्रा। चले तव्हांजो गानो वरी सुभाणे ॿुधंदासीं, अॼु जी लिस्ट जेका आहे न फुल थी चुकी आहे। और ये है जी आई एम

ओके जी, ये मैसेज हमें मिला है जी, खतादार एएसपी हमारे साथ मौजूद है, अब इनका नाम है या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, आपने मैसेज किया है जी, बहुत शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच। आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी।

अच्छा एसन और पानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एसन तवा के वेलकम चऊं था। इमदाद अली पवर असा सगर मौजूद है, वेलकम चऊं था अवहां के भी। अदा किशोर भाई कहते हैं कि अदी लिस्ट फुल थी तो कुछ गाना हार जी वेदा हूं, हां बिल्कुल ये ही थींदा, और सुभाने लाए बचाए रखना है। नन्ना बाबा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे खूबसूरती के सफा वधाए छींदी, समझो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले पो। हिदायतुल्लाह कहते हैं सिदरा नसरुल्लाह सुमरो कहाँ गया जो बोलता था मेरे तो बच्चे भी आपका शो सुने गया, पता नहीं कहाँ चला गया, वैसे अब तो खुद ही नहीं सुन रहा, बच्चे पता नहीं कहाँ से सुने गए, तो पता नहीं कहाँ है। और वफा मीर मुनवर भाई हमें सुन रहे हैं, अदा तमाम जो मोहब्बतों और निगाहें सैयदा हमें सुन रही है, आपके कुछ मैसेजेस कॉमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं तो जो रह जाए तो बस माफ कर दीजिएगा।

अच्छा वैसे इहा ॻाल्हि आहे, अगरि मां तव्हांखे गानो ॿुधण ॾींदी आहियां त पोइ वरी तव्हांजा मैसेजेस तव्हांजा कॉमेंट्स ई रहिजी वेंदा आहिनि. सो हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा या तव्हां गानो ॿुधंदा या तव्हांजा मैसेजेस शामिल कया वेंदा, छो त टाइम सवा थोरो हूंदो आहे न. सो मूंखे प्रोडक्ट ते बि ॻाल्हाइणो हूंदो आहे, तव्हांजा मैसेजेस बि एड करणा हूंदा आहिनि. सो इन दौरान मूंखे गाने में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे. सो प्रोग्राम आहे जना वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो अवां ताईं पहुचायो वञे पियो. वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, पंहिंजी खूबसूरती खे वधायो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा वञो. असां गॾु तव्हां डायल कयो पिया 03 15 799 0595.

अच्छा मोहम्मद हाशिम हमारे साथ हैं, आसिफ अली जुनेजो हमारे साथ हैं, सैयदा निगाह ज़ैनब हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। अमानुल्लाह टगड़ भाई हमें सुन रहे हैं। अमानुल्लाह टगड़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। गाना खत्म हो गया, एक और गाना लिस्ट में है और गाने हम सुनते रहेंगे जी, आप लोगों के पसंद के गाने। आज मैंने सब लोगों के तकरीबन गाने की जो पसंद है ना वो लगा लिए जी प्रोग्राम में। मैंने अपनी पसंद का एक भी गाना नहीं लगाया, तो सुन ले जिसको गाने और प्ले लिस्ट पसंद ना आए तो ये आप लोगों के ही गाने हैं। अच्छा वफा शेजादो मक्सी हमारे साथ है भाई, आपको भी वेलकम इन खुशियों में दी।

है क्या बातें, हजार का जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम, मोहर्रम अली गुड़ाहू भाई हमें सुन रहे हैं, नूर भी इनके साथ मौजूद है, दोनों को वेलकम इनको शामदी। और इसके साथ साथ ये किशोर भाई क्या कहते हैं, हाँ तो ईद वही मेहरबानी की वही मैं सोच रही हूँ, बस हाँ ईद वही खत्म की उस गाल के। और ये जी है नूर सिंतनियो भाई, तवा के असो प्रोग्राम वाणी पयो सो मोहबत हूँ, वास भाई तवा के प्रोग्राम वाणी पयो सो मोहबत हूँ, सखावत अली राजपुर तवा डायल कयो 03 15 799 0595।

गाना उस गाने की वाइब दे रहा है. इश्क ने पकड़ ली कलाई है मेरी, जहन पे मोहब्बत शाही है तेरी, देख मेरी आंखों में यार तू चल के, दिल में तस्वीर बनाई है तेरी. और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारे पास मौजूद है जी, ये गाना जाएगा डेडिकेट हमारे चाचे को. लास्ट में वैसे भी चाचे का गाना लगता है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है. अच्छा फजीला, आपका बहुत शुक्रिया. बिल्कुल आप अपनी बेटी का नाम रखिएगा सिद्रा मुस्कान, कोई मसले की बात ही नहीं. पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने नहीं किया. और क्या आप इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन प्योरी क्रीम, लगाइए खूबसूरत हो जाइए और मुझे बताइए.

सनावला बिरोई भाई हमें सुन रहे हैं। सनावला क्या कहते हैं, आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का, ऐसे ही शौक से सुना करिए। आदिल कहते हैं क्या खाती हैं, मैं तो वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं। दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया। किशोर भाई बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए होंगे ना, कम करते हैं निंड्रा फिट आई तो वहां जो प्रोग्राम बुध पे।

अच्छा, क्या कहते हैं, मुख्य रोज बने तो प्रोग्राम तुम जो होती हो उसमें जाई उदाय. चलिए असां तव्हां खां इजाज़त वठूं था, छो त असांजे प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे न उहो ख़तमु थी वियो आहे. अञा ॿ मिंट आहिनि, थोरी बकबक अञा कंदासीं. अच्छा, विलेज के टी जतोई से मोहम्मद नवाज मला रहीम मला हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जी. मकसूद मला, आप अपना क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो डायल करते रहिए 03157990595. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे, डी स्किन फेस वॉश आहे, वाइट एज आहे, ॾाढा सारा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कंदा पंहिंजे खूबसूरती खे वधाए ख़्यालु रखो, छो त ज़िंदगी में अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा न त अॻिते हली तव्हांजो बि को ख़्यालु कोन रखंदो. सो पंहिंजो ख़्यालु रखणु तव्हां पाण सिखो, ठीकु आहे, या स्टार्ट तव्हां पाण वठो, पोइ तव्हांजो हर को ख़्यालु कंदो. सो पंहिंजो ख़्यालु रखो, पाण खे सुहिणो सुहिणो बणायो, पंहिंजे खूबसूरती खे सफ़ा ईअं चिटो करे छॾियो, गोरा गोरा थी वञो, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो. ऐं न मिले थो अगरि प्रोडक्ट त जेको नंबर ॿुधाईंदी थी प्रोग्राम में हुन ते राब्तो तव्हां लाज़मी कंदा कयो. अक्सर तव्हां जे चवंदा आहियो त भाजी असांजे एरिया में नथो मिले, असां किथां वञी वठूं, त हीउ जेको नंबर तव्हांखे सॼे प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो, त इन लाइ ॿुधायो वञे थो जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थिए, तव्हां हिन नंबर ते राब्तो कयो ऐं राब्ते करण खां पोइ तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो. ओके, हज़ार बार तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया. वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सुभाणे वारी प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: महफिलों सजन दियो हैं टपाल मेजबान ईद उल अज़हा जो असली मेजबान।

0: वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तक़िल हुजे थी सिर्फ़ तब्दील, हर पल तबक़नि जा नवां पहलू, वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र, सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िरा मीर।
1: सियासत जो बेड़ो, वफ़ाक़ जो साहिल, क़ौमी धारा, मुल्की मईशत जो घुमंदड़ फिरंदड़ थी थो। सूबाई असेंबलियुनि खां आला ऐवाननि ताईं पावर कोरिडोर में छा फ़ैसिला थी रहिया आहिनि? असांजी ज़रात, सनत ऐं असांजी अफ़रादी कुवत, असां ठाहींदासीं मज़बूत पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
6: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
7: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 02578 6।
8: जी हा, 2331 5700।
7: जी जो नेटवर्क।

0: 15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar, zindagi ki lehar, GFM 88 Network, Sindh ki aawaz.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
5: माइक में इशू है को मसलो को दिसों था पया असन जो के सुगड़ से सगत ब्या मौजूद है अस उन तरफ हलो था आई पेंजे प्रोग्राम जो आगाज कर था सामन अस जो भलोर सुगड़ सुगड़ गुलबे जमाली साहब तरफ अस हलो था आई अस आवा सा वधिक हाल हवाल कयो था. अस्सलाम वालेकुम साईं.
6: वालेकुम सलाम बाबा साईं. चाल
5: साईं दो अल्लाह जय सरवा बता कि आयो ठीक है तबे सही आ
6: द्वारम साहब अला जो मेहरबानी हन असा जे बुद्धन जो मेहरबानी हन जो असा के बुद्धन सा तमाम मेहर
5: जी समिन असा जो सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब असाई अवा असा के खुदा जे दिने मा छा बुधाइंदा
6: हियर त हाल फिलहाल अवा के आज्या जो एक बैत बुधाइंदुस उन सा गडो गड पो वरी असा सुगरन जी कचरी गुजारत जी बलंदी आज्या में फकीर साई चे तो ओता कवनो नहीं अजे जेके अदा चवन अच तह मोहब्बत वारी महफिल में तू साबित चै जा सच त मिलजो ईमान मलूक चवे गरो तारा गच बुहारी दे तू भी आई अखे रंग प्रिया में रच त अचई मल अबासी चवे तू पतंग वांगे पच वखर कढेन विहा जा कूड़ किनु कच पो बुछड़ी संगत का बच मता वरी पोए पिछेवान पर ओता कवनो नहीं जे जेके आकिल चवन इंदो कर डोर गुजार त डाहप वारी तू डिठ पिरोली दींदो कर त मणे मिसरियो मलूक चवे तू वटन खणी वींदो कर विरह च दे संगत के या नेकी बपण सा नींदो कर पोए थधो घड़ो थींदो कर त ओतीन तोखे अदब सा पर फकीर चे तो अंगण न वञो नहीं जे जेको सिक मजान यार सडे मानी खाराए मेहमान के पोया पल पल पियो पडे अचण वञण तन खां तू शौक मांडे यार छडे पो तन जे यार तडे लड़ी न वञ लुकमान चे
7: वाह वाह जमाली वाह.
6: पर अंगण वञो नहीं जे जेको सिक मजा करे सड पैर भरे चे पुनल सा गिरह बखाजे गड तोड़े पानी पियारे प्यार सा तब कुर्क जे कढे न कड पोई सिर सा हड लुटाए छडे लुकमान चे लुटाए छडे. अञा बि फकीर साईं चए थो त भले आए भला पिरी मिठा थी मेहमान तुंहिंजी आजियां कयां इज़त सां तोखे खट ते विहारियां खान सालनि खां सिको ई इहो अंदर में इहो अरमान मौला तोखे आहे मोकिलियो महबूब करे महिरबान सवे सोणा आहिनि संसार में पर महबूबनि में आहे तुंहिंजो मान अचण जी तो इनायत कई अजीब कई एहसान पिरी तूं आहे पेर भरे तुंहिंजे कदम कदम थिया कुर्बान हिन गुलबेग खे कीन हो गुमान जो ही अजीब ईंदा आंगण ते
4: आंगण
6: ते महिरबानी.
5: वाह उस्ताद वाह वाह उस्ताद वाह जी असम उस्ताद सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब असा खां मौत कर पासो जीअण जो शौक जाॻियो आहे. असा खां मौत कर पासो जीअण जो शौक जाॻियो आहे. हसी सरकश निगाहुनि सां पीअण जो शौक जाॻियो आहे. लॻाए जान जी बाज़ी कबो दीदार दिलबर जो सलामी रोज़ सोणे खे ॾियण जो शौक जाॻियो आहे. अजय ज़मीन असांजा सिंध जा भलोर सुगर असां सां गॾु मौजूद आहिनि. असांजो प्रोग्राम आहे जारी सारी. हाणे हलंदासीं असांजो भलोर सुगर आहे पंहिंजो साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहब. जीअं समय असांजो भलोर सुगर आहे. अॻे प्रोग्राम में साईं जन जेके हुआ त साईं जन जी तबियत ठीक न हुई, हिन करे गैरहाज़िर रहिया. हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूद आहिनि साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहब. असांजे भलोर सुगड़नि मां आहे ऐं सिंध जे एवॉर्ड याफ़्ता सुगड़नि मां आहे. वधीक देर नथा कयूं साईं तरफ़ वञूं था. अस्सलाम वालेकुम साईं.
7: साईं वालेकुम अस्सलाम.
5: साईं कहिड़ा हाल आहिनि अवां जा?
7: साईं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह जे करम. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो?
5: दुआऊं अलाह जा एहसान. साईं अवां असांखे ऐं असांजे सामान खे छा ॿुधाईंदा अॼु ख़ुदा जे ॾींहं मां?
7: साईं सभ खां पहिरियां त असांजे तरफ़ां सभिनी ॿुधंदड़नि सामान खे ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम या अली बदर हक मौजूद.
5: वालेकुम अस्सलाम मौला अली बदर.
7: ऐं उन खां पोइ त सभु ॻाल्हियूं काफ़ी ॻाल्हियूं हिते असां कयूं जेके सामान ॿुधियूं तव्हां बि ॿुधियूं, पर अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे त कुझु हक़ीक़त

0: वहदानियत, कुछ नसीहत, त कुछ ए गालियो भी थी वन।
1: बिस्मिल्लाह साईं।
0: तो शायरी आए हमल फकीर लिगारी जी सराकी में शायरी आए। हमल फकीर चवे तो ना मैं परणी, ना मैं कुआरी, ना मैं रनड़ रनी।
1: वाह,
0: वहदानियत जो बैत आए साईं। ना मैं परणी, ना मैं कुआरी, ना मैं रनड़ रनी, ना वत मैं हक बख्शाया, ना के वर्दी वनी। ना मैं जणी जणाई केंदी, ना के हथ निपनी। नावत के नल यारी लातम, नावत के नल भनी। हमल मैं हुन के तू पुछा, इहा बात अपनी।
1: वाह,
0: रूह में डाहा कुआरा कुआरा, कुआरी में डी हस्ती। रूह कुदुस से कालू बल्ला, माने महाल अलस्ती। आदम हवा अन्या न होए, जमीन न मेडी बस्ती। मरना जमना अन्या न होया, फलक न का ए पस्ती। अंसर जाया मैं नहीं हूँ, नफ्स जने दा मस्ती। मिन रूही जी मौज मने दा, हम शेवा नूर परस्ती। अकुल बजाज नू मुंह न जाना, ना नाज हुसन दे खस्ती। हाल हकीकत हमल लिठावत, अस्त वजूदी अस्ती।
1: वाह वाह वाह वाह, सही
0: बात। अजय रब पाक जी शान में बहता है, ए दिल देख अजायब रब दी, क्या की तुस क्या कर सी। ए दिल देख अजायब रब दी, क्या की तुस क्या कर सी। हे मुख्तार मुल्क दा मौला, जो चाहे सो सरसी। आपो आप अलीम असुल दा, इल्म नसी ए दरसी। जो कुछ जे दे बाप लिखा है, आखिर उस पर डरसी। के कु रंज रसायो ना ही, तुरत करो रब तरसी। माहू जिन मलायक परिया, तिफिल तोड़े सद बरसी। मुर्ग मिरू ते जीत जनावर, हिक वारी हर मरसी। कोई न रहसी रूए जमी ते, मौत कुली कु चरसी। खाक से तिरल खाक वैसी पे, बाकी खाक उदरसी। रहसी रब गफूर, हिकई जो लफ्ज लिमन दा पड़सी। क्यामत थीसी नफसी, नफसी बेद वागू हर फरसी। मीर मोहम्मद कुर्सी उथल सरस नब्या विच सरसी। बख्शिश थीसी हर मोमिन ते, कुल नाल फजल दे तरसी। अमल देख लकाव हकानी, जान जुसातन ठरसी।
1: वाह जमाली वाह, वाह इतनी से जमाली वाह।
0: दुरंगा दवा छोड़ दुई थी, वहदत नाल विसाली। नसीहत जबत
1: बिस्मिल्ला।
0: दुरंगा दवा छोड़ दुई थी, वहदत नाल विसाली। जात विन्याता जात सुजानी, आली ला यजाली। मस्जिद ते बैखाने ते, हे विचू वाट निराली। हमल हक सुजान बाजू, कूड़ी कील मकाली। खुदी खुदा नू मूल न बांधे, खुदी खुदा नू पल्ले। खुदी के ही खराब किते गए, तहत सरा दे तल्ले। खुदी जे ही खता न काई, मार खुदी नू खले। हमल हुब हकानी होवे, छोड़ खुदी खुद मिले। खुदी खुदा नू मूल न बांधे, खुदी खुदा नू खारी। खुदी खुदा नू दूर करें दे, खुदी खुदा विसारी। खुदी कितिया खुद ना मिल दे, खुदी खुलम खसारे। हमल हक सुजाने, सो जो खुद तू खुदी गुजारे। तस्बीह उते ते तकड़ घड़े री, वलवल मण के फेरी। हाँ हिंसर वही एक रवाज थी विवाद माना जे के दिस वही तस्बीह हथ में माना मानू समझन ही वो को बुजुर्ग गा को जी बोट पेरे पवे अची। तस्बीह उते ते तकड़ घड़े री, वलवल मण के फेरी। शौक ते कुए शेख थी वण दत मन आप वे को पेरी। सिर दिते सिर हासिल तोड़े, सह सके तू सेरी। हमल हक हक्या विच अंदर, तू गोली जेर जबेरी।
1: वाह सही वाह वाह।
0: पढ़ पढ़ मसले पाप करें दे दे दे दर बिना। पान पढ़ी भी तो गुनाह भी करी तो वरी बेन के तो डिजारी।
1: वाह सही वाह।
0: पढ़ पढ़ मसले पाप करें दे दे दर बिना। हाँ आखण सोखा पालन औखा, आख्या दुरुस्त दना। हाँ कहनी उत्ते रहनी रहना, इहो कम किना। हाँ नफ्स शेता ते कावड़ तेरी, के हा डोह डुना। हाँ गर्ज ते को गलतान कीता, चा गाफिल विच गुना। हाँ हमल जे हक हासिल कीता, खटिया पिड़ तिना। पड़ पड़ मसले मुल्क मुठोई, कूड़ा दा थियूं काजी। मुछा मुछ मकर दे की तुई, जोड़ बैठू बमबाजी। नको ते कु इश्क अल्लाह दा,
1: वाह सही वाह।
0: नको ते कु इश्क अल्लाह दा, नका मौज मिजाजी। राम जपण दे वेले रोगी, गरीब फुरन दा गाजी। तलब कछोई नाल कुफर दे, मुंह विच नेक निमाजी। तवकल छोड़ तमाकू लगू, कीते दस्त दराजी। हमल हीले हाल न हासिल, आप थी वेर बराजी। रात दी रब रोटी दे, अन्या नहीं तू रजदा। सौरभ ते कु याद नहीं, जो ऐब तेरे कुल कजदा। हमल हिरस हवाई फिटा कर, मौत नगारा वजदा। घणा घणा कर गए घणे, पर घणा कहीं न कीता। अज ताई से घणो के भकोन कयो।
1: हां से बिल्कुल।
0: पर जे कयो तो वरी खणी वे भकोन व्या।
1: खणी केर भकोन तो।
0: घणा घणा कर गए घणे, पर घणा कहीं न कीता। जिना भी घणा कीता, तेवल नाल उन्हा भी न नीता।
1: वाह सही।
0: दुनिया दौलत छोड़ तिना भी, मौत पियाला पीता। आखे हमल अखे नाल डिठो से, कफन उन्हा दा सीता।
1: आए आए।
0: तकदीर अगू तदबीर नहीं चलदी, सस करी तकरीरा। तदबीर उते तकदीर है गालिब, वेखो विच तफसीरा। रोज अजल दे लिखे कहना, मेटे पीर फकीरा। हमल हो होशियार बढ़े, ते छोड़ कुड़िया तदबीरा।
1: वाह हमल वाह वाह।
0: गई वही वल हथ ना आसी, गई उम्र ना आंधी। एक गुजरी भी गुजरी वेंदी।

0: मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन

0: पासे जा भलोर इनाम याफ्ता सुगड़ समय हाने हलंदासी सुगड़ फकीर मोहम्मद कासिम दाहरी साहब तर साईं अस्सलाम वालेकुम
1: साईं वालेकुम सलाम साईं कलालन
0: साईं दुआओं अल्लाह जैसा नवाब दायो किया है ठीक कयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है साईं ईद खैर जी कईसू
0: जी बा माशाल्लाह खैरन सा सा भी ईद कई
1: हां ईद कईसू खैरन सा वरी प्रोग्राम हो ईद जो ईद मिलन प्रोग्राम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आपो
0: साईं तवान असा जे सामान के खुदा जे दिने मा छा बुधाई
1: था हाने गुजार त पढनासू
0: बिस्मिल्लाह
1: हां गुजार त साईं चवे जे उस्ताद गुलबेग ए नाला लोह जो न कर اے نالا لوہ جو نہ کر مونجی بولی نالو غلامند اے نالا لوہ جو نہ کر مونجی بولی نالو اے نالا لوہ جو نہ کر مونجی بولی نالو
2: वाह उस्ताद वाह वाह उस्ताद वाह ए नाला
1: लोह
2: जो न कर
1: मुझी बोली नालो आ
2: वाह मुझी बोली नालो आ
1: नालो आ
2: ए नाला
1: ए नाला
2: ए नाला लोह जो न कर
1: लोह जो न कर
2: भला ई तो चे तो ए राजा
1: जी
2: ए राजा ए बादशाह ए उमर बादशाह मुके कोटन में कैद बंद न कर मुं मिसकीन जो घर पोइते मंगणो खेत सा थेला
1: बच बगिर
2: बड़ेवा ए नाला
1: लोह जो न कर मुंजी बोली नालो
3: ए सोनल पिरी
4: सुन मारवी कोर्ट में बगदा
2: हां सही
4: हां हाने मथे घुण चले दिसे थी में गमल हार
2: हां
4: तो पो वरी ने पोया जो यादगिरी से चले हाँ इतने बारहवीं जो गाल ए नाला लोह जो न कर मुझी बोली नालो
2: ए नाला
4: भला ए बादल ये कक्कर न कर लोह जा कक्कर नालो बादल
3: ए सावण ये शोर न कर
2: ए में गबलार न कर गज गोड़ न कर
1: बच
3: एडी देर न कर
4: बच्चे बाबा फकीर बच्चे
3: एडी या लेट न कर अवेयर न करे
4: बच्चे
1: लोह जो न कर मुझी बोली नालो
2: मुझी बोली चाहे तो मुझी दिल मन ही बद

0: अल्लाह नालो सुखियो तो
1: सुखियो
0: वाह सही वाह वाह सही वाह
1: वाह सही वाह वाह सही वाह
2: दर बुझार जा गुफ्तान तो पोख माल जन में ना लोई ना
3: पोख माल जन में ना लोई ना
2: ना
3: चथो एड़ो मुझो को सुनो सजन सखी ही ना
2: बचे थी उस्ताद
3: एड़ो चथो मुझो को वर वारसी ना
2: बच
3: एड़ो मुझो को धनी ही
2: वाह वाह करे छडी वाह वाह
0: धनी में मरी वाह वाह सही वाह वाह मोहम्मद इदरीस
2: वाह वाह
1: वाह मोहम्मद इदरीस वाह वाह सही वाह असई गुरा मोहम्मद गुजारिश आहे त हिन खे सॼो कयो छो जो टाइम थिए पियो न्यूज़ कमर्शियल ब्रेक जो अजी सर्विस मिला
2: उस्ताद सुर ससोई पुनो में जॾहिं ससोई जबल में बीठी आहे त केरु माण्हू मिलियो हाणे हुन सां बि ॻाल्हाए त पोख माल जन में नालो ई न पोख जी आहे बीठी माल जान भरा नालो अची आहियां मुंहिंजो को हाणे धणी आई न
1: मोहतरम ॿुधंदड़ शुगर कचहरी जूं हीअ सुहिणियूं ॻाल्हियूं इते ई थोरी देरि लाइ रोकियूं था अवां किथे बि न वञो छो त ब्रेक ऐं न्यूज़ खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं नवनि ख़्यालनि दिलि खे विढ़ंदड़ शायरी ऐं वणंदड़ ॻाल्हियुनि सां त गॾु रहंदा ऐं ॿुधंदा रहो FM नेटवर्क हलो त हलूं था हिकु मुख़्तसिर वक़फ़े न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक तरफ़ असां नंढड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था असांजो अवांजो साथ रहंदो पूरे 5 वॻे ताणी

0: पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल कौमी धारा मुल्की मईशत जो घुमंदड़ फिरंदड़ फिथो सूबाई असेंबलियुनि खां आला ऐवाननि ताईं पावर कॉरिडोर में छा फैसला थी रहिया आहिनि असांजी ज़रात सनत ऐं असांजी अफरादी कुवत असां ठाहींदासीं मज़बूत पाकिस्तान इक़्तिसादी बहराननि जी आड़ में जनम वठी रहिया आहिनि मुआशी तरक्की जा ख़्वाब सियासतदाननि जी चाल छा आहे ब्यूरोक्रेसी जो हाल छा आहे छा आलमी मंज़रनामो तब्दील थी रहियो आहे जॾहिं ख़बरूं सुर्खियूं बणिजी वेंदियूं आहिनि तबसरनि ऐं तज़ियनि मां निकिरंदा आहिनि सोच जा नवां रुख हिकु आम पाकिस्तानी जे सवाल जो असां बणजंदासीं आवाज़ आउं आहियां जीएम जमाली ऐं आवां ॾिसंदा फ्रंट पेज विथ जीएम जमाली सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ केटीएन न्यूज़ ते
1: वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दील हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िया मीर सां
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
3: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ

0: एम ए कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सेला
1: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदी आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि जो जीए एफ एम मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6
2: जी हा 2315525786
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि साईं जन जा दिलि जे गहराइनि सां असां थोराईंदा आहियूं। सामिन, ही प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसल सां पेश कयो पियो वञे। असां सां गॾु असांजी सिंध जा मशहूर ऐं मारूफ़ सुगड़ असां सां गॾु मौजूद आहिनि। हाणे हलंदासीं असांजो सुगड़ फ़क़ीर आहे ग़ुलाम मोहम्मद असांजे राणी साहब तरफ़। अजी सही तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदा?

0: अजय साईं
1: इत जे हिसाब सां बहत आ उस्ताद गुलबेग उहे प्यारा माण्हू जेके जंहिंसां दिलि हुजे चवंदासीं ईद ते ईंदासीं वरी न अचनि पोइ छा गुज़रंदी हूंदी फ़क़ीर चयो त वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वाइदा पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वाइदा पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे हुई आस दिल में सजण सार लहंदे अची ईद हिन ते मूसां यार मिलंदे अंगण ते अजीबा मिठा मोर टिलंदे खुशियूं खूब मुंहिंजूं छॾियूं तो बुहारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वाइदा पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे वठी यार कपड़ा सिबाए रखिया हम ॾसिया हा न कंहिंखे लिकाए रखिया हम वरी तन ते हीरा चिटाए छॾिया हम तोरीअ छॾिया वठी यार कपड़ा सिबाए रखिया हम ॾसिया हा न कंहिंखे लिकाए रखिया हम वरी तन ते हीरा चिटाए छॾिया हम वरतम यार तोलाए मुसिंगार सारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वैद पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे
2: वाह गुलाम मोहम्मद वाह वाह सही वाह
1: न पाता मूं कपड़ा न ईद ई पढ़ी थम न मेंदी हथनि ते न पाती घड़ी थम ॾींहं राति दिलि में तुंहिंजी धुम धड़ी थम तोरीअ छॾिया मूं हड़ई ताम हारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वैद पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे
2: वाह साईं वाह इलाही बोड़ो सभु हारे छॾे वई
1: हा साईं किथे थो वञे
2: केरु खाए
1: सजण साल सारो चो सिक में सिकाई न न्यापो न खतड़ो न फोन ते ॿुधाई पको पाण थी वे या गेरन रहाई अची कर तूं हाणे कंधी कंहिं किनारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वैद पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे चवे चांडियो तोखे खुदा जो कसम मां हली आओ हाणे वकोड़ियो वहम मां रुगो तात तुंहिंजी न ॿियो कोई कम आहे तो अहमद अली तोखे पल पल पुकारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे कयल वैद पंहिंजा तूं वेठे विसारे वही ईद गुज़री छॾे यार मारे
2: वाह वाह वाह सही वाह वाह सही वाह वाह सही वाह
1: वरी सिराइकी में बैत उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे मिठई माखी मिसरी सभई खाज खारे उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे मिठई माखी मिसरी सभई खाज खारे वगे वेस वांचा जुती बूट जुड़दी भली मुश्क खथूरी न अतुर सैंट वणंदी ज़हर यार ज़िंदगी मेॾी बाब बणंदी सभई गॾु समूरे मैंते ख़ल्क खिलंदी ॾेवां ते ॾाढे कूं कहिड़ी में मयारे उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे ईद उल फितर ते न आयूं न मेकूं मंगायूं खाली मुल्क में ते ख़ुशी ॾींहुं खिलायूं घुमियूं गॾु गेरा मेॾा जी जलायई नकी भाल भाकुर न रोंदा रत अखड़िया जीवें चित नसारे उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे मिठई माखी मिसरी सभई खाज ईद उल उज़हा ते आ इंतज़ार तेॾा तकिम राही ते ॼा मांदा मन मेॾा रल मिल रकीबा किती कहर केॾा किती क्यास न कोई जानिब जव जेॾा करां ॻाल्हि कीवें अंदर ए अज़ारे उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे मिठई माखी मिसरी सभई खाज खारे उहा ईद कहिड़ी सिवाते पियारे कोनी वस मेॾा नही यार सरंदी कोनी वस मेॾा नही यार सरंदी मुठी दिलि म्यांदाद जीअंदी न मरंदी सिवाए सोणे कंहिंदी कानी थींदी न चवण कंहिं चङे दा न मेॾी ॻाल्हि मनंदी होए ढोर बकरी त करां कंहिं किनारे

वेलकम बैक कमर्शियल ब्रेक का बग वर बीहर आवा सबनी सजणन बुधणन भेनरन भाइरन आई बुजुर्गन के मोजे तरफा वेलकम भलिकार आई जी आयनो जी समय ही प्रोग्राम सुगर कचरी जी एफएम नेटवर्क जे तसलसल सा पेश के पे वने आही प्रोग्राम पूरे नेटवर्क ते लाइव हली रहयो है असा जो अवा जो साथ रहंदो पूरे 5 बजे ताणी समय हाने हलंदासी सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब तरफ जेके असा के नड़ बेत बुधाईंदा अलगोजे सागर जी साईं बिस्मिल्लाह

0: वेलकम बैक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का खबर भी है सबनी सजड़न बुधड़न दोस्तन भेनरन भाईरन के वेलकम भलीकार अचूं था सामिन असा सा गड असा जे सिंध जा मशहूर मारूफ सुगड़ असा जे सुगड़ मोहम्मद इदरीस जमाली साहब बेत बुधाया पे तमाम बेहतरीन बेत बुधाया पे कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो हाने वापस हलूं था साई मोहम्मद इदरीस जमाली साहब तरफ जेके असा के कंप्लीट अजी समीन हाँ हलूं था सुगड़ फकीर मोहम्मद कासिम डायरी साहब तरफ अजी साई
1: जी साई
0: जी साई
1: भाई मोहम्मद इदरीस साहब तमाम बेहतरीन गालियों बुधायूं ही बेत ताके बुधायूं था त सुरीला मानू सकरण जा सोणी अथत बाजार
0: वाह
1: हां साई सुरीला मानू सकरण जा सोणी अथत बाजार सडे विहारी ने सिक मा पाए बाहूं हार
0: वाह
1: सडे विहारी ने सिक मा पाए बाहूं हार कचहरियूं कन कुर्ब जूं एड़ा मिठा मिठा उचार कचहरियूं कन कुर्ब जूं एड़ा मिठा मिठा उचार बुधी महफिलूं मलूकन जूं अचो वञे दिल खे करार
0: वाह
1: बुधी महफिलूं मलूकन जूं अचो वञे दिल खे करार मोहब्बती माण्हू सिंध जा मिड़ेई आहिनि मज़ेदार मोहब्बती माण्हू जा मज़ेदार मल फ़क़ीर बि हित्या
0: वाह
1: हित्या शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार
0: वाह
1: क़ुर्बान फ़क़ीर हमल फ़क़ीर बि हित्या शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार जे नथो अचई हिकु वार त ॾेखारियईं बिलावलीअ जी दरगाह पीर मोहम्मदीन जे ॻोठ मुला सांद में पीर मोहम्मदीन जे ॻोठ मुला सांद में साईं सिंगार जो बैत ॿुधाईंदासूं
0: जी साईं
1: सिंगार फ़क़ीर गुलबेग सिंगार जो बैत आहे त हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे
0: वाह वाह साईं
1: हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे बदन ते बखमल पोशाक पायो जवानी जोहर अञा ॿियो आहे मुश्क अंबर कथूरी लायो उमदो अहमर अञा ॿियो आहे पर किताब कारी लिखिया ऐं पढ़िया अथई पर हाफ़िज़ कसर अञा ॿियो आहे पर निमाज़ ऐं रोज़ा बि साबित रखिया अथई पर अहमाल बहितर अञा ॿियो आहे खाराए माण्हू सखी थी पर सखियुनि जो दर अञा ॿियो आहे हातम सखी होजे मगर शेर हैदर अञा ॿियो आहे ॾात वारा ॾेह में हुआ पर भिटाई नंबर अञा ॿियो आहे सवा लख न बि आया ज़मीन ते पर रहमतुल्ला रहबर अञा ॿियो आहे अञा ॿियो आहे अञा ॿियो आहे अञा ॿियो
0: वाह साईं वाह वाह साईं वाह वाह साईं वाह तमामु ज़बरदस्त सिंगार जो शेर हाणे हलूं था सुगड़ फ़क़ीर कुर्बान अली जलबानी साहब तरफ जी साईं
2: साईं बेत ॿुधाईंदासीं साईं आशिक माशूक साईं
0: जी साईं
2: साईं आशिक अलाह साईं साईं माशूक मोहम्मद मुस्तफ़ा साईं
0: अलाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिहि
2: साईं जी साईं बिस्मिल्लाह साईं अर्ज़ु आहे त आशिक जो मतिलबु पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू आशिक जो मतिलबु पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू आशिक दर दोस्त जे सो वारे विकाणू उन जो रत कूत माह जी उठ खाए लाणू किन वेचारनि खां वियो हलियो किन जे साह खे सिबाणू माशूक मोहम्मद मदनी लाइ वते थो विघाणू जिते राजन ईंदो राणू उते पतो न पवंदो पुरसलात जो उते पतो न पवंदो पुरसलात जो पिरी हूंदो पाण हो त ॿियो आरी हूंदो

0: तवाई सुबह शाम आहे कडो लोक लोका तुझे यार खातिर कई यार कोठिन पे मुखे ता काफिर संदो इश्क सजदो कयां पियो तुझी याद सीने निया पियो इनई दम दिला से अन्या जियां पियो
1: वाह सही वाह वाह सही वाह
0: मियां दाद तो के घणो वई संभारे लिखियो जो मिसाका उहो पियो तो पारे वसलरी अहां जे शफा की न थींदी दुखी दिल मुजी जी दवा की न थींदी बिठो दम लबन ते डियां पियो सुने निया पियो इनई दम दिला से अन्या जियां पियो तुझी याद सीने निया पियो इनई दम दिला से अन्या सर जियां पियो जियां
1: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह
2: संजराणी वाह वाह संजराणी वाह
1: ता असुगर फकीर गुलबेग जमाल साहब तरफ आखरी चंद मिंट आइन अजी साईं
3: साईं हाणे पीर एजाज साईं जी काफ़ी हिकु असांखे ॿुधाईंदासीं सुघड़ाइप जूं त ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पर ही काफ़ी असां वरी हाणे काफ़ी जे अंदाज़ में ॿुधाईंदासीं जो साईं एजाज बादशाह जी काफ़ी आहे सुर उमिरि मारियूं

0: मुझा मारू लडे लडे व्या कह सांगड़े मुझा मारू लडे व्या कह सांगड़े मुखे मारे मारुन जी तांगड़े मुझा मारू लडे व्या ओ कैद कजा जो बंद करारो चवण चलण जो नाहे चारो
1: वाह
0: कैद कजा जो बंद करारो

0: मारे मारुन जी ता गड़े मुजा मारू लडे व्या ओ सोन मोरियूं हीरा जहवार जमंद जरियूं जरबफ्त जेवर
1: वाह साईं वाह वाह गुलबेग
0: सोन मोरियूं हीरा जहवार जमंद जरियूं जरबफ्त जेवर से सब भाया थी मारू थी चवे सोन सोन तो जा माज की थी भाया ए सब भाया थी ओ ना गड़े मुखे मारे मारुन जी ता गड़े मुजा सांगी लडे व्या
1: वाह सही वाह वाह सही वाह तमाम जबरदस्त मोहतरम बुधंदड़ो अज जे हन सुगर कचहरी में आवाज साथ मोहब्बतन ए दुआउन दुआउन
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: अमरीकी सदर ट्रंप जो बीहद यूटर्न ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीजू उमाणे छदियों अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कया है ट्रंप ईरान से माहिदे ते जल्द फैसले बाद जहन तब्दील कर छो ट्रंप ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीजू उमाणियों आन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है जो अस चाहूं इो ईरान का हासिल कर रहा हूं ईरान एटमी हथियार न ठाण समेत एटमी बम खरीद न करण की भी खातरी कराई है माहिदे से सही थन्दे ही आबना हरमुस खोलो वो असा का जल्दी ना सुठो माहिदो चाहूं था माहिदे के वेझो भी आयो ईरान से सुठी डील न थी तो बीहर ऑपरेशन करणो पवन्दो

अमरीका अपना हुर्मुस में नाकाबंदी खत्म करने वाले ऐलान तां फिरी वियो। अमरीकी जंग वारे वजीर पेट हेगसेथ सिंगापुर में मीडिया से गालाइंदे चयो आए त अपना हुर्मुस की नाकाबंदी बरकरार आए। ईरान में बीहर फौजी कार्रवाई करनी पई त कंदासी। अड़ो मुआदो कबो जो अमरीकी अवाम के मफाद में हुंदो। ईरान से मुआदो थियण का पोए अपना हुर्मुस के खोलो वेंदो। अपना हुर्मुस एक टोल फ्री रस्तो हुंदो जो सजी दुनिया इस्तेमाल कर सकंदी। बड़ी अग अमरीकी सदर अपना हुर्मुस ता नाकाबंदी खत्म करण जो ऐलान कयो हो।

ईरानी फौज वापारी बहरी जहाजन ए ऑयल टैंकर्स लाए नई वार्निंग जारी कर छी। ईरानी फौज जो चवण है ईरान की इजाजत का सिवाय हुरमुस के सफर की कोशिश खतरनाक साबित थी। आपने हुरमुस ते ईरान जो कंट्रोल मजबूत है। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिपाप है अमरीका से ठोस नतीजन का सिवाय को भी माहिदो न थो। ईरानी अवाम के हकन की जमानत न मिली तो को भी माहिदो कबूल न हों। ईरान दुश्मन के अजीम ए तारीखी जंग में पुठते धिकी रो है। शहीद रहबर एक मजबूत ईरान जो बुनियाद रखो।

केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी नाराज़ एमपीएस खे राज़ी करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। सुहेल आफरीदी गुज़िरियल राति एमपीए अब्दुल गनी आफरीदी जी रहिशगाह पहुतो। केतिरनि ई नाराज़ मेंबरनि सां राब्तो बि कयो। काबीना में शामिल न करण ते एमपीए नाराज़गी ज़ाहिर कई हुई।

0: लाड़काणो में हथियार बंदन जी पुलिस अहलकारन ते फायरिंग, एक अहलकार शहीद एक जख्मी, घंटे फाटक वारे इलाके में हथियार बंदन बिन पुलिस अहलकारन ते फायरिंग कई। फायरिंग में एक अहलकार मुजीब रहमान सोलंगी शहीद है, कई मेहमान जख्मी थे। शहीद पुलिस अहलकार जो बड़ जरूरी कार्रवाई बाद वारे सन हवाले।
1: कम से कम 12 फुट अंदर न लायो ने छकार तो मन छरे जो जिया पो आ सज मन पानी जिया पो आ उने में मच्छी वदी थिंदी आ सके मच्छी दो जरूर रोजगार मच्छी आ तो स जिया पो मच्छी आ यो सके बे पानी की सहूलत था कबे पानी पीण ले सके मिले कोन तो घणा गोठाने ते ता जाके के न सके सफा बिल्कुल उने ता बर
2: तकरीबन 1.5 किलोमीटर तई सुकी हुआ मंचर जे मलान जे जिया पो आ ना इयर पानी मंचर जो पानी आ 112 113 आर एल रखो वही ताकि मंचर जहाँ मला वो रोजगार कर सकन।
0: सिंध जी खूबसूरत है सबका वही
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक मुसलसल
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578 6।
7: जी हाँ 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

अरफात मिनहास की गेंद पर उन्होंने जो है वो 55 रन बनाए थे। अरफात मिनहास का भी ये पहला मुकाबला था और उनकी बॉलिंग का जिक्र तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ही मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लेने का एजाज हासिल किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक कारनामा है। पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओडीआई मैच में ज्यादा खिलाड़ी आउट किए। कोच इंग्लिस जिन्हें एज कैप्टन टीम का यहां भेजा गया, उनको एलबीडब्ल्यू के अरफात मिनहास ने 13 रन बनाए, 22 गेंदों पर एक चौका लगाया उन्होंने। लेवस चेन एलबीडब्ल्यू बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके 2 गेंदों पर। कैमरन ग्रीन बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके। मैट रेनशॉ जो कि माजी में ओपनिंग भी करते रहे हैं वो टीम में आए हैं, उनको इब्रार अहमद ने बोल्ड किया, 61 रन बनाए 63 गेंदों पर, 5 चौके और एक छक्का लगाया तेज बैटिंग की। और पीक ने 7 रन बनाए 16 गेंदों पर, एक चौका लगाया। कोनोमैन ने 24 रन बनाए 40 गेंदों पर, 2 चौके लगाए, उनको कैच किया बाबर आजम ने हारिस रऊफ की गेंद पर। नेथन एलिस को अरफात मिनहास ने बोल्ड किया, 8 रन बनाए 14 गेंदों पर। सांगा बोल्ड शाहीन आफरीदी कोई रन न बना सके, जबकि स्टैनलिक नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। 13 एक्स्ट्रा थे, पहली विकेट 34, दूसरी 62, तीसरी 63, चौथी 68, पांचवी 123, छठी 145, सातवीं 179, आठवीं 199, नवीं 200 और दसवीं विकेट भी 200 के स्कोर पर गिरी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। शाहीन आफरीदी जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने 6 ओवर किए 19 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ 5.1 ओवर 24 रन 1 विकेट। अबरार अहमद 10 ओवर 44 रन 2 विकेट, मगर पिकॉक्स बॉलर अरफात मिनहास 10 ओवर 32 रन और 5 विकेट हासिल की। शादाब खान 8 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं, महंगे रहे। सलमान अली आगा 5 ओवर 21 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। साहिबजादा फरहान कॉट मैट शॉर्ट बोल्ड तनवीर सांगा 28 रन बनाए 33 गेंदों पे 3 चौके लगाए। मां सदाकत कॉट मैट शॉर्ट बोल्ड मैथ्यू कोनोमैन 8 रन बनाए 14 गेंदों पर 1 चौका लगाया। बाबर आजम जिन्होंने पीएसएल में सबसे ज्यादा रन किए, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे, उन्होंने यहां भी अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया। नेथन एलिस की गेंद पे बोल्ड हुए, मगर उससे पहले उन्होंने 69 रन बनाए 94 गेंदों पर, 4 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। शानदार अंदाज में बैटिंग करते दिखाई दिए। गौरी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो 2 डाउन पे बैटिंग के लिए आए थे और शानदार बैटिंग की, 65 रन बनाए 92 गेंदों पर, 8 चौके उन्होंने लगाए। एलबीडब्ल्यू आउट किया नेथन एलिस ने। अरफात मिनहास नॉट आउट रहे 18 गेंदों पर, 17 रन बनाकर 18 रन बनाकर 17 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। सलमान अली आगा एलबीडब्ल्यू लबस चेन 6 रन बनाए 4 गेंदों में 1 चौका लगाया, जबकि समद जो थे वो 1 रन पर नॉट आउट रहे। देयर वर 7 एक्स्ट्रा एज वेल और पाकिस्तान ने टोटल 202 रन बना लिए 42.3 ओवर में 5 विकेट पे, जबकि अभी शादाब खान शाहीन आफरीदी हारिस रऊफ और अबरार को बैटिंग के लिए आना था। फॉलो विकेट पाकिस्तान की पहली विकेट 25 पे गिरी, दूसरी विकेट 49 पे, तीसरी 176 पे, यानी 127 रन गौरी और बाबर आजम के दरमियान बने। फोर्थ विकेट फेल एट 185, देन पाकिस्तान डिड लूज द फिफ्थ विकेट एट 195 और वहां से पाकिस्तान अपने टारगेट को चेज करने में कामयाब रहा। नेथन एलिस 7 ओवर 45 रन 2 विकेटे, स्टैनलिक 6 ओवर 37 रन कोई विकेट नहीं, कोनोमैन 10 ओवर 29 रन 1 विकेट, सांगा 10 ओवर 31 रन 1 विकेट, शॉर्ट ने 3 ओवर के 11 रन कोई विकेट नहीं, रेनशॉ ने 5 ओवर के 33 रन कोई विकेट नहीं और मार्नस लबशे ने 1.3 ओवर में 15 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जी जनाब, वुमेन का वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस महीने की 12 तारीख से, यानी

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

back to get his form back. अच्छा गौरी ने जो बैटिंग की है 92 गेंदों पे 65 रन विकेट कीपर बैटर ने टेस्ट मैचेस में गो के अच्छी कारकर्दगी दिखाई गॉट इंजर्ड मुल्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वो खेल नहीं पा रहे पिछले कुछ दो तीन सालों से जहां तक ओडीआई एंड टी20 का ताल्लुक है तो पाकिस्तान हैज बीन सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड विकेट कीपर बैटर तो 92 गेंदों पे 65 रन की एक समझदाराना इनिंग्स एक दानिश खेली है आपके विकेट कीपर गौरी ने लेट्स सी इफ यू कैन कंटिन्यू अगर वो इसी तरह अपने फॉर्म को जारी रखें और इसी तरह अपनी सलाहियतों का इजहार करें क्योंकि एट टाइम्स वनडे मैच में आपके पास वक्त होता है टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दी जो उस वक्त डिमांड हो जो तकाजा हो यानी 200 रन आपको चेस करने थे तो 92 गेंदों पे 65 रन इज अ गुड स्कोर वही अगर आप 250 चेस कर रहे होते तो आई वुड हैव डिमांडेड आई वुड हैव सेड के 75 करें आप 92 पे तो ये थोड़ा थोड़ी कैलकुलेशन होती है अगर आप 300 चेस करें देन यू शुड बी स्कोरिंग 90 और 85 एटलीस्ट आउट ऑफ 92 बॉल्स ये अगर कैलर पाते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं कि कोई आपके स्ट्राइक रेट पे तनकीद करे अगर 200 रन चेस कर रहे हैं तो आप 90 गेंदों पे 50 भी करें चलेगा तो इसलिए बाबर आजम की 94 गेंदों पे 69 रन की इनिंग्स मैं समझता हूँ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड अ वेरी गुड वन और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कारकर्दगी जो है आपकी टीम की फतह में किरदार अदा करे आपको एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको मैच जीतना है ठीक है तो वो गौरी को भी मैं उसके लिए सराहूंगा और बाबर आजम को भी अब देखें आगे चलकर अच्छा एक बात आप नोट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जिस ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं ना तो ये स्टीव वॉ की टीम है ना इवन मार्क टेलर की टीम है ना रिकी पॉन्टिंग या उसके बाद माइकल क्लार्क की ये ऑस्ट्रेलिया की जो 80s के बाद यानी एक दौर आया था ऑस्ट्रेलिया का जब एलन बॉर्डर ने टीम को संभाला उसके बाद इस वक्त सबसे खराब क्रिकेट वो खेल रहे हैं खासतौर पर आपने टी20 वर्ल्ड कप में देखा जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त श्रीलंका के हाथों शिकस्त फिर यहां जब पाकिस्तान आए तो तीनों टी20 हार गए और अब ओडीआई में भी कल जिस तरह की कार ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि जिस ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं या वो ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए थे पिछले कम से कम 99 के वर्ल्ड कप से लेकर ऑलमोस्ट 2021-22 तक जो हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए अब वो टीम नहीं है इसमें वो स्पार्क वो ब्रिलियंस वो चीजें नजर नहीं आती लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया हम ये सब जानते हैं कि उनकी काउंटी टीम भी जो होती है उसमें भी एक फाइटिंग का स्पिरिट फाइटिंग का जज्बा हमेशा मौजूद रहता है और इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं एलेक्स कैरी इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैटर एंड अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल एज वेल मैट शॉट को हम सब जानते हैं रेनशॉ को तो कभी एन चैफल बहुत हाई रेट करते रहे हैं और रेनशॉ को वो हमेशा सजेस्ट करते रहे कि टेस्ट मैचेस में ओपनिंग करनी चाहिए जिस तरह के मैथ्यू हेडन किया करते थे इसी तरह कुछ और खिलाड़ी भी इसमें अच्छे हैं लवशेन बारल उनके टेस्ट मैचेस के और ओडीआई के बड़े सरकर्दा क्रिकेटर हैं क्योंकि अब टी20 भी खेले पाकिस्तान में पीएसएल भी यानी कैप्टन हैदराबाद और अच्छी कैप्टनसी की और मैच जितवाई भी उन्होंने खुद भी रन किए स्मिथ भी बहुत अच्छा खेले थे तो कहीं ना कहीं ये कोई बुरी टीम तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया की वेरी गुड साइड मगर फिर भी वो स्प्रिटेड वो हाई स्टैंडर्ड जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जानी जाती रही है उसकी कहीं ना कहीं बहरहाल ये बात हमें माननी पड़ेगी कि कमी है दैट्स व्हाट इज लैकिंग इन द ऑस्ट्रेलियन टीम लेकिन फिर भी उम्मीद करनी चाहिए कि अगले जो दो ओडीआईज हैं वो काफी फाइटिंग हो सकते हैं और मुझे याद आता है जो इंडिपेंडेंस कप खेला गया था 19 में आप लोगों को याद होगा जस्ट आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू द हिस्ट्री उसमें मई और जून में मुकाबले हुए थे इफ माई मेमरी सर्व्स मी राइट क्योंकि वो उस वक्त भी कुछ शेड्यूल ऐसा था और इंडिपेंडेंस कप ऑर्गेनाइज करना ही करना था और उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंडिया ने हिस्सा लिया था 1997 में और सईद अनवर ने चेन्नई के मुकाम पर जो कि उस वक्त यूज टू बी कॉल्ड मद्रास 194 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को वो मैच हराया था 327 रन करके राहुल द्रविड़ ने भी बाद में

विक्ट्री स्कोर की थी, तो उसके बाद से मुझे याद नहीं आता कि कोई बायलैटरल या ट्रायंगुलर सीरीज ऐसी हुई हो या पाकिस्तान इंडिया में जहां मई और जून में मैचेस खेले जा रहे हैं इतनी गर्मी के बावजूद। इससे भी अंदाजा लगाइए कि आजकल क्रिकेट कितनी ज्यादा होने लगी है, क्रिकेट के तकाजे कितने बढ़ गए। और वहां मुझे याद है 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक मैच शुरू होता था या 5 बजे, ताकि गर्मी की शिद्दत से या हिद्दत से बचा जा सके, ताकि उस वक्त शाम का वक्त तकरीबन हो चुका हो 4:30 बजे, दोपहर का वो सूरज गुजर चुका हो जो कि झुलसा देता है। तो लेकिन अब जाहिर है चीजें बदल रही हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, आपको विंडो, आपको मौका नहीं मिलता सीरीज ऑर्गेनाइज करने का। अब देखिए अभी पीएसएल आपकी होके हटी है, अभी आईपीएल चल रही है, इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट शुरू हो गया है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, इंग्लैंड इंडिया की वुमेन जारी है, पाकिस्तान आयरलैंड वेस्ट इंडीज की वुमेन जारी है, और साथ में ये अब आपका वुमेन का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो अंदाजा अब आईसीसी ने आपके इतने स्लॉट जो है वो ले लिए हैं, जिसमें कि वुमेन का T20 वर्ल्ड कप भी है, वुमेन का ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, उसका मेंस का और साथ साथ ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है, फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी है, साथ साथ आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, साथ साथ आपके और कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें आईसीसी का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपनी जो होम सीरीज और अपने जो होम इनका उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इंडिया अपना आईपीएल अपनी होम सीरीज से हटके कराता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का यह है कि उनकी होम सीरीज के पैरेलल चलती है उनका बिग बैश भी और इनकी T20 ब्लास्ट और 100 भी साथ में। अब जैसे 4 तारीख से टेस्ट मैच भी होगा, उसी दौरान में रात के वक्त या सुबह के वक्त या गैप के दिनों में उनके T20 के और दूसरे मैचेस होते रहेंगे डोमेस्टिक के, मगर इंडिया को तो 2-2.5 महीने चाहिए अपने आईपीएल को अलग से ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी ये जो विंडो है अप्रैल से लेकर मई की, वो तो इंडिया बिल्कुल खा जाता है और उसमें वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि उसके पैरेलल कोई सीरीज हो रही हो, कोई मैचेस हो रहे हैं। तो अब इतना टफ हो गया है, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू प्ले इन जून। और फिर ये अब वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप पीएसएल और आईपीएल भी पैरेलल चला है, साथ साथ चला है, तो ये वो चीजें हैं जो बदली हैं या बदल रही हैं। बहरहाल आईपीएल का आज फाइनल है, गुजरात टाइटन्स और रॉयल्स वहां से फाइनल में पहुंच गए, जहां से कोई सोच नहीं रहा था। मैंने कुछ जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग आईपीएल आई वाज चेकिंग द रैंकिंग, कोई ये दोनों टीमें जो थी वो बहुत ही पीछे मौजूद थी, कोई 7वें-8वें नंबर पे इनको रेट किया जा रहा था। Nobody was saying कि ये टॉप टू में आ जाएंगे, बट दे हैव कम इन टॉप टू। बहरहाल उस फाइनल में क्या हो सकता है उसका जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस ब्रेक के बाद। इस वक्त आइए ले लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जीएएफएम रेडियो नेटवर्क पर।

आर इन द फाइनल ऑफ आईपीएल। आईपीएल एक बहुत लंबा इवेंट है और दो महीने तक एट टाइम्स तो बोरिंग भी हो जाता है, मगर इंडिया में ये बात हमें माननी पड़ेगी और माननी चाहिए कि इतनी पॉपुलरिटी के थ्रू आउट आईपीएल भी हम ग्राउंड्स को फिल देखते हैं, ग्राउंड्स को भरे हुए देखते और जबरदस्त अंदाज में जो है वो मौजूद रहते हैं देखने के लिए तमाशाई अपने को जो परफॉर्मेंस करते हैं। और आजकल सूर्यवंशी की बड़ी बातचीत है जनाब, उनका बड़ा जिक्र है और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेज ही ऐसी दी हैं, बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं और बड़े जबरदस्त उन्होंने रन किए हैं और जितनी भी तारीफ की जाए उनकी वो कम है। तो देखने आज बार कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन जाएगी और क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी और किस अंदाज से जो है वो खेल आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल इन दोनों टीमों का फाइनल में पहुंचने का, खासकर गुजरात टाइटंस का फाइनल में क्वालिफाई करना ही बड़ी बात है। बहरहाल अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे खेल की उम्मीद हम कर सकते हैं इस फाइनल में आईपीएल के। देखिए क्या सूरत हाल बनती है, कौन सी टीम जीतती है। बाल इंडिया हमेशा से अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करने में बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि टॉप पर रहा है बाजी में भी, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सूर्यवंशी बिल्कुल ही एक कम उम्र खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी से एक तरह से हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को। जबरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखा रखी है और उम्मीद यही है जिस तरह के वो फॉर्म में है कि वो आगे भी इसी तरह की कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। हालांकि रिसेंट अगर कारकर्दगी देखी जाए तो आरसीबी ने अपने आखिरी काफी मुकाबले जो हैं वो जीत गए हैं, एक ही मैच हारा है अपने आखिरी पांच मुकाबलों में, जबकि दो मुकाबले हारे हैं गुजरात टाइटंस ने अपने आखिरी पांच मुकाबलों में। तो दोनों ही टीमें जबरदस्त अंदाज में खेलती आई हैं, दोनों ही टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है और दोनों ही टीमों की कारकर्दगी जो है जिसे कहना चाहिए काबिले तारीफ भी रही है। और उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में दोनों टीमें दे विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग जहां तक ताल्लुक है। अब विराट कोहली का देखिए 600 रन के साथ वो टॉप स्कोरर है जहां तक आरसीबी का ताल्लुक है। ये टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट से वनडे अपना एक तरह से ये टी20 क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं।

0: लेकिन यहाँ 600 रन कर दिए जनाब ने और 722 रन कर दिए शुभमन गिल ने, और भुवनेश्वर कुमार जो कि अब टीम का हिस्सा नहीं नजर आते, उन्होंने 26 विकेटें हासिल कर ली हैं अपनी टीम के लिए आरसीबी के लिए, और उधर रबाडा ने 28 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं। तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए कि कैसी कैसी कारकर्दगियां जो है हमें देखने को मिल रही हैं, आउटस्टैंडिंग है जनाब, इसके लिए तो तारीफ ही हो सकती है। और आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं, बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जैकब बैथल हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, कॉक्स हैं, टिम डेविड हैं, बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा, विराट कोहली का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, हेजल वुड है, जैकब डफी है, भुवनेश्वर कुमार का मैं जिक्र कर चुका हूँ, विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं, देर आर और फिल सॉल्ट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, ही कैन कम ऑल गन्स ब्लेजिंग, उसके अलावा शेफर्ड है वेस्ट इंडीज के, ये खतरनाक हैं। और अगर मैं जिक्र करूं गुजरात का तो उनमें शुभमन गिल कैप्टन है, 722 रन बनाकर वैसे टॉप पे हैं, उसके अलावा जॉस बटलर हैं इंग्लैंड के, साथ साथ जो है वो जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, ही कुछ बड़े नाम हैं, उसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, गैलन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, कृष्णा हैं, कगिस और अबाडा का मैं जिक्र कर चुका हूं जो टॉप विकेट टेकर हैं, इज डन अ ग्रेट जॉब, शाहरुख खान जो पहले इंडिया की जो छोटी छोटी लीग्स होती हैं उनसे सुर्खियों में आए थे, इज अ गुड प्लेयर एज वेल, उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं, लूक वुड हैं और जयवंत यादव हैं, तो तमाम ही टीम्स के पास 6 प्लेयर्स दोनों ही टीमों के पास मौजूद हैं। अब लेट्स सी कि आज शाम जब मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान शुरू होगा, हु विल टेक दिस विक्ट्री अंडर द बेल्ट, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, ये सारा कुछ देखना होगा। बहरहाल ये बताते हुए कि सुनते रहिए जीए एफएम रेडियो नेटवर्क, अब अपने मेजबान राणा शफाक को दीजिए इजाजत, आप न्यूज ब्रेक देखेंगे यानी सुनेंगे, न्यूज के साथ साथ जो है वो आप
1: 16 बैठे
0: घंटे में यकीन कुछ म्यूजिक हमारे इंजीनियर्स आपके लिए प्ले करेंगे
1: रॉयल इन्वर्टर
0: नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी बहुत सारी खबरों के साथ जिसमें कुछ लोकल खबरें भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने टेप बॉल क्रिकेट जो एक फलती फूल की इंडस्ट्री है उसके हवाले से भी आपसे बातचीत की थी, और
2: आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए और बिल भी आए कम, चेरी एयर कूलर
0: मैंने मुलाकात करवाई,
2: गिफ्ट्स पास्ता गिफ्ट्स रेसिपी से डालें अपने खानों में जान,
0: आपकी मुलाकात करवाई जाए, आपको रोशनास कराया जाए,
3: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी
0: यंगस्टर्स के लिए क्या स्कोप है, अब
4: सूफी का एहतमाद लिए।
5: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
6: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड।

0: नए माली साल जी बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों ऐसी सोलर पंप का थियण जो इम्कान। ज़रिए मुंसिपाली में पारा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करण की तजवीज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों ते सेल्स टैक्स 18% थियण जो इम्कान है। ईंदड़ माली साल में गाड़ियों की इम्पोर्ट 40,000 ताईं महदूद करण की तजवीज। हाइब्रिड गाड़ियों ते भी सेल्स
1: टैक्स।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Bayan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और

0: सिंध में पाणीअ जी शदीद बोहरान बावजूद पंजाब तकारी लिंक कैनालनि ज़रिए पाणी जी खणत बंदि न कई। सिंध हुकूमत जो एहतजाज, सिंध में पाणीअ जे बोहरान ऐं गैर मुनसिफ पाणी वर्ष ते सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमण वफ़ाक़ खां पंजाब जी ज़्यादती ऐं इरसा जे फ़ैसलनि जो नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। शजीर इनाम मेमण चयो त इरसा जे फ़ैसलनि सां सिंध सां अण बराबरीअ वारे वर्ताउ जो तासुर मज़बूत थी रहियो आहे। कंहिं बि सूबे खे ॿिए सूबे जे हिसे ते तरजीह नथी ॾेई सघिजे। सिंध गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां 22% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। कराची जहिड़े माशी मर्कज़ लाइ संगीन ख़तरा पैदा थी रहिया आहिनि। गुडू बैराज ते 42 ऐं कोटड़ी बैराज ते 29% पाणी जी खोट रिकॉर्ड कई वई। वफ़ाक़ सिंध खे जाइज़ मुकमल ऐं जाइज़ हिसो फराहम करण लाइ अमली क़दम खणे।
1: पाणी जिया पियो आहे, हुन में मछी वॾी थींदी आहे। असांखे मछीअ जो ज़रूर रोज़गार मछी आहे, छो त असांजी जिया पियो मछी आहे। इहो असांखे ॿियो पाणीअ जी सहूलियत असांखे खपे। पाणी पीअण लाइ असांखे मिले कोन थो। घणा ॻोठ आहिनि तव्हां जाचे कयो न, असांखे सफ़ा बिल्कुलु
2: तकरीबन 1-2 किलोमीटर ताईं सुकी वियो आहे। मंछर जे मलान जो जिया पियो आहे न हींअर पाणी, ऐं मंछर जो जेको पाणी आहे 112-113 आर एल रखियो वञे ताकी मंछर जा मलाह उहो रोज़गार करे सघनि।
0: सिंध जी खूबसूरत ऐं सभ खां वॾी मच्छर ॾंड बि सुकी वई। फान सईदाबाद में मच्छर बचायो इतिहाद जो ॾंड जी बहालीअ लाइ मच्छर बंदि ते एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त पाणी घटिजण सबबि मच्छी जो नसल ख़तम थी वियो आहे, मुहाणा बदहाली जो शिकार आहिनि। पाणी जी सतह घटिजी 106 आर एल यानी 6 फुट रहिजी वई। 30,000 खां वधीक इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणी खां महरूम आहे। मच्छर ॾंड में पाणी जी सतह खे बहाल कयो वञे।

वाटर पंपिंग धाबेजी स्टेशन ते बिजली की बंदिश सबब कराची के पानी की फ्राहमी मुअत्तल। वाटर कारपोरेशन के तर्जुमान जो चवण है धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबी सबब शट डाउन कर।

0: लॉकडाउन सां धाबे जी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 यूनिट्स बंद आहिनि। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे पाणीअ जे फरामे मुअतल आहे। बिजली मुकमल बहाल थियण जे वक़्त बाबति हतमी ॼाण फराहम नाहे कई वई। एमकेएम जो कराची में कब्जन वारे मामले ते एस्टेब्लिशमेंट खां मुदाखलत जो मुतालबो। एमकेएम अगवाणनि ऐं अॻोणे मेयर वसीम अख़्तर चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची में कब्जन जो नोटिस वठे। फारूक सत्तार चयो त कराची कब्जा माफ़िया हवाले कई पई वञे। जमायत इस्लामी छो ख़ामोश आहे? हिल पार्क ते कब्ज़ो कयो पियो वञे। मकानी चूंडनि खां अॻु कामरान टिसूरी खे ॿीहर गवर्नर थियण घुर्जे। हिन भेरे वॾी तयारीअ सां बलदियाती चूंडनि में हिसो वठंदासीं। एमकेएम अॻवाणनि पुराणी रिवायत बरकरार रखंदे कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जो मुतालबो बि वरितो। हिल पार्क केएमसी जी प्रॉपर्टी हुई ऐं हूंदी, हिकु इंच बि कंहिंखे न डिॿो। मेयर कराची मुसाफ़ वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त लैंड डिपार्टमेंट जे ऑफिसर ते मौके ते पहुची कब्ज़ो रोकरायो। मां एमकेएम जे करतूतनि जी सज़ा भोगियां पियो, संदन दबाउ में न ईंदुसि। कराची कंहिं हिकु जमात जी जागीर न पर पाकिस्तान जो माशी मर्कज़ आहे। एमकेएम इल्ज़ाम लॻाए पंहिंजी सियासत ज़िंदा करण जी नाकाम कोशिश करे पई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद जो एमकेएम अॻवाणनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद्द अमल। शर्जील इनाम अहमद चयो त शहर जा मसला वधाईंदड़ पाण खे आजो बणाए पेश करे रहिया आहिनि। कराची में जारी मनसूबा प्रोपेगेंडा सां रद्द नथा करे सघजनि। सिंध हुकूमत मकानी इदारनि खे इख़्तियार ॾेई माली वसीला ऐं कानून सपोर्ट फराहम कई। बसो यूनिट्स खां घटि बिजली इस्तेमाल कंदड़ लाइ सब्सिडी ख़तम करण वारी ख़बर बेबुनियाद करार। तवानाई वरे वज़ीर अवेस लकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 88।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

टिनर राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ऐं डीज़ल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंद न थियो हणत जारी सिंध में वायूं बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो अवाम परेशान सूफी अज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ्ता सूफी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारी जो 773 उर्स मुबारक टंडो मामद खान में मुनक़िद सूफी अज़म वारे फिक्र के ख़राज तहसीन पेश हैदराबाद में मुबैना तौर घरेलू तकरार तां झेड़ो जवाबदार जो पांजे मासी जे घर ते हमलो फायरिंग गोलियों लगण सबब एक नौजवान कतुल ऐं बियो भा जख्मी जवाबदार फरार ऐं स्पेशल रिपोर्ट भी अवां बुधी सघंदा सिंध में शदीद गर्मी ऐं अड़ ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम आज़ाब जे चकीअ में

सिंध में पाणी खोट वधी 22 सैकड़ो थी वई। सीजी ऐं टीपी केनालनि वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिबि कोटड़ी बैराज वटि 29 सैकड़ो खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिबि सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराह में मजमूई 22 सैकड़ो पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सीजी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिबि 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाशी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबब सिंध में काहियल फसलनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवण आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अख पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कम करणु घुर्जे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरो कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जैं दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ कर वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो कर वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब उहो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर ते हलंदड़ हो, जंहिं वटि ओगरा जो लाइसेंस ऐं दिफ़ा वारी वज़ारत जी NOC मौजूद न हुई। ऐलान में ॿुधायो वियो आहे त ओगरा जी इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो खे सील करे छॾियो आहे। सिंध जे घणनि मैदानी इलाइक़नि में सख़्त गर्मी रिकॉर्ड क़ाइमु करे छॾिया। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ऐं सिंध जा घणे क़दुरु मैदानी इलाइक़ा सख़्त गर्मीअ जे लहर जे वकड़ में आहिनि, ऐं हीअ गर्मीअ जी लहर आचर ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते मुताबिक़ गुज़िरियल ॾींहुं सभ खां वधीक गर्मी पद दादू ऐं जेकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो। साॻी रीति सिबी, तुर्बत, शहीद बिनंदिराबाद, लाड़काणो ऐं मोहन जे दड़े में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाज़ी खान में 47 ऐं लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो, जॾहिं त इस्लामाबाद

में गर्मी पद 40 डिग्री खां वधीक रिकॉर्ड कयो वियो। उन खां सवाइ मौसमियात खाते चयो आहे त कराचीअ में अॼु गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। सूफ़ी अज़म तसोफ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत आफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद ख़ान में मुनक़िद करे संदसि सूफ़ी अज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। टंडो मोहम्मद ख़ान में इल्म व अदब अकेडमी तरफ़ां सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ खे भेटा ॾियण लाइ मुनक़िद कयल अदबी तक़रीब खे नाले वारे मुहक़िक़ अदीब लेखक सैयद महिरबान अली शाह शम्सी ख़िताब दौरान चयो त सूफ़ी अज़म जे तसोफ़ वारे फ़िक्र खे पूरी दुनिया में इंसानियत जे भलाई जो दर्स करार ॾिनो वञे थो। सदारती ख़िताब दौरान हुन चयो त शाह शम्स तबरेज़ी पूरी दुनिया जे अंदर पंहिंजे तसोफ़ वारे फ़िक्र ज़रिए पंहिंजी अलॻि आला सुञाणप ऐं मक़ाम रखियो आहे, जंहिंखे भेटा ॾियण जे लाइ मुनक़िद कयल ही अदबी तक़रीब संदसि अज़मत खे असां न सिर्फ़ ख़िराज तहसीन पेश करियूं था, पर संदसि अज़ीम सूफ़ी अज़म तसोफ़ वारे फ़िक्र बाबति उहो बि तस्लीम करियूं था त शाह शम्स तबरेज़ीअ जो नज़रियो इंसानियत जे रोशन मुस्तक़बिल जो हिकु मिसाल आहे। अदबी तक़रीब खे सोरमी सतह बदीन जी अॻवाण मारवी आपदा समूह सदब कीरियो पीपी यूथ अॻवाण सैयद सलाल शाह बुख़ारी तालीमी माहिर ग़ुलाम नबी कीरियो समेत नाले वारनि लेखकनि अदीबनि शाइरनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयो। जॾहिं त अदबी तक़रीब खां पोइ राग रंग जी महफ़िल में सिंध जे मशहूर सूफ़ी फ़नकार सूफ़ियाणा कलाम ॻाए दाद हासिल कयो। उन मौक़े ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफ़ी अज़म जे तसवुर सां तालुक़ु रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीननि जी बि दस्तारबंदी पिण कई वई। हैदराबाद जे हाली रोड थाणे जे हद पुराणी सब्ज़ी मंडीअ वेझो नज़रहत कॉलोनीअ में मुबैना तौर घरू तकरार तां जवाबदारनि जी मासीअ जे घर ते हमिलो करे घर अंदरि फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं जे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान असद पठाण थॾे ते ई फोत थी वियो, जॾहिं त संदसि भाउ शाहदेव पठाण ज़ख़्मी थी पियो। वाकिए बाद जवाबदार फरार थी विया। वाकिए जो इतलाह मिलण ते हाली रोड पुलिस पहुची वई, जंहिं लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुचायो, जिते ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मीअ खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। पुलिस मूजिब वाकियो घरेलू तकरार सां पेश आयो आहे। कातिल ऐं मक़तूल पाण में मासात थियनि। वाकिए जी वधीक जांच जारी आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा हयां पिया वञनि। वारसनि जे अचण बाद FIR दाख़िल कई वेंदी। जॾहिं सिविल अस्पताल में ज़ख़्मी शाहदेव पठाण साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त संदसि मासीअ जे पुटनि सदन घर ते हमिलो करे संदसि भाउ असद पठाण खे क़तल ऐं खेसि ज़ख़्मी करे फरार थी विया आहिनि। हुन चयो त जवाबदारनि में लधो, रियाज, फियाज़ ऐं शहबाज़ शामिल आहिनि। होॾां वाकिए जी इतलाह मिलण ते तक जे MP इंजीनियर साबिर हुसैन क़ाइम ख़ानी पिण सिविल अस्पताल में पहुची ज़ख़्मियुनि जी अयादत कंदे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियण जी ख़ातिरी कराई। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गंबट गिम्प सिटी अस्पताल पहुची HIV में मुबतला ॿारनि जी अयादत कई ऐं मुख़्तलिफ़ वार्डनि जो दौरो कयो। HIV में मुबतला ॿारनि खां नफ़रत न करियो, HIV बाबति सुजाॻीअ जी ज़रूरत आहे। HIV हिकु ख़तरनाक लेकिन बीमारी आहे। अफ़सोस आहे त हीअ बीमारी ॿारनि में तेज़ीअ सां वधी रही आहे। HIV सिरिंजुनि मां तेज़ीअ सां वधे थी। अताई डॉक्टर बार बार इस्तेमालु थियल सिरिंजूं इस्तेमालु कनि था, जिन ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न पई कई वञे। हुन जो वधीक चवणो हुयो त पाकिस्तान में सिहत खाते में तबाही थियल आहे, इस्पताल में वसीलनि जी खोट, जंहिं करे बार बार सिरिंजुनि जो इस्तेमालु कयो वञे थो। डॉक्टर बि तकलीफ़ में आहिनि, उन्हनि खे पूरियूं पघारूं नथियूं मिलनि। डॉक्टरनि खे तहफ़ुज़ बि ॾियणु घुर्जे। हुन हिकु पुछियल सवाल जे जवाब में चयो त 28 तरमीम खे नथो मञा। तरमीम आवाम खे ॿुधाइण खां बग़ैर नथी आणे सघिजे। अफ़वाह आहिनि त कराची खे वफ़ाक जे हवाले कनि था ऐं

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्त तारीख जे सख्त तरीन गर्मी जे लहर के मुंह ॾेई रही आहे। आसमान मां बाह वसंदड़ सिज, तपंदड़ हवाऊं, साह उसाटजंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जी ज़िंदगीअ खे अज़ाब बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मी ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ोक नवाबशाह, दादू, लाड़काणो, सखर ऐं जेकवाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जो घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मजदूर, हारी ऐं पुरियो तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्त गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंध मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेनि आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाध आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जाॻी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबब पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंद माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिब शदीद गर्मीअ सबब हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंग वधी वियो आहे। अफ़सोस जोगी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबब मरीज़ ऐं संदन वारस सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंध जी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फराहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमीअ खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो अवाम हिन वक़्तु बिते अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान अवाम जी ज़िंदगीअ खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त ही सूरतहाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुगो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्त गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां निजात हासिल करे सघनि।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।